0: ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: ये अपना वाइब सेट है
2: GFM, द बेस्ट है।

0: interesting for evil at heart. Damage it does kin ki kayo out par you kiye to ke khape super white rice collagen beauty cream jehme aahin chawran ki khubiyo ai kojic acid formulation jo jild ke restore kare unhi ji nami ki lock kare ai chawran ki khubiyo jild ma fine lines and jhuran ki ghat kan ai wrinkles ki ghat kare sirf trim behind me jild ki badhaye naram mulayam and bright unhi sa garugat super white beauty serum jehme ji har katre sa chehre ke mile vadhik khoobsurti हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज

0: मातली राते जे लाइ फोन करियो 0300 36 36 879 ऐं 0312 34 01 287। सुकून एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252578।
2: जी हा, 2315525786।
1: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: सारे के सारे कोलैप्स करने का पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज चीफ मिनिस्टर केपी. और कोई एक जान जाती है, ये क्लैरिटी के साथ, अल्लाह ना करे कोई एक जान जाती है, उसका जिम्मेदार सुहेल अफरीदी हो. इस चीज को उनको समझ लेना चाहिए. हर मुमकिन हद तक कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ. जो भी तोहीन अदालत की बनती है उस पर कहीं कोई किस्म की नरमी नहीं की जाएगी. जो लोग अरेस्ट होंगे इस धरने के लिए जो इकट्ठे हो रहे हैं, उनका बिल्कुल जिस तरह ट्रायल होता है.
7: गालिम जी, नाकामियों जो जिम्मेवार सुहेल अफरीदी है, इस्लामाबाद से चढ़ाई करण नींदी एक भी जान जाया थी तो जिम्मेवार सुहेल अफरीदी हों. वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस संद चवण हो तो मुहदे से 99% इतफाक चुको हो. सदर के कापी देखारे वापस आयस तो सुहेल अफरीदी मुहदो तब्दील कराए छो. फैसला सुहेल अफरीदी के करणा हुआ तो पा छो न आयो. खबर हुए हा तो मुहदो कयो वेंदो त गालियूं ई न कयूं हा. असां दहशतगर्दी जे मामले ते गालियूं कयूं था त हू इनकार कन था. केपीके जे वरे वज़ीर सुहेल अफरीदी गालियुनि जी कमेटी खे जारी कयल मसौदो जारी करे छॾियो. सुहेल अफरीदी चयो आहे त ड्राफ्ट में को बि गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबो नाहे. मुतालबो हो त वज़ीर आज़म अपोज़िशन लीडर विच में मुलाकात जो बंदोबस्त कयो वञे. वज़ीर आज़म हुकूमती इतिहाद पीपी ऐं अपोज़िशन पार्टियुनि जे नुमाइंदनि जी हिकु गडि॒यल सियासी कमेटी जोड़ी वञे. पीटीआई बानी ऐं बुशरा बीबीअ खे जेल मूजिबि हक़ ॾियारिया वञनि.

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
8: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
5: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे,
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
7: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 0331252576
6: जी हाँ 2315525786
7: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अरे न खुश और बेरोनों की स्किन और इतनी जलाए छा
3: डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट
2: पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चार अंजू खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चांवरन जी खूबियों जल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम ईहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमालु करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
5: खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारहान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सघो था। हंध फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनियों वेंदियों। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खड़ी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मोहसिन नकवी जो सोएल आफरीदे खे ॻाल्हियूं नाकाम बणाइण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। सलमान अकरम राजा चयो आहे त ॻाल्हियुनि में नाकामी जो ज़िमेवार सोएल आफरीदी न आहे। 72 कलाकनि दौरान केबीके जे 5 ज़िलनि में एमरजेंसी लॻाइण जो चयो वियो। एमरजेंसी लॻाइण जी इजाज़त नथा ॾेई सघूं।

ॿुधायो वञे त पीटीआई वफ़द आॾो रखियल मुतालबनि में कहिड़ो मुतालबो गैर आइनी या वस खां ॿाहिरि आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त असांजो पहिरियों मुतालबो टीटीपी ऐं दहशतगर्दनि जी मज़म्मत, ॿियो केपीके में दहशतगर्द ठिकाणनि जो मुकमल ख़ात्मो ऐं टियों अफ़गानिस्तान बाबति परडे॒ही पॉलिसीअ ते अमल करणु आहे। असांजो असल मक़सदु लॉन्ग मार्च रोकणु न पर दहशतगर्दीअ जो मुकमल ख़ात्मो आहे।

कराची जे इलाइक़े शाह लतीफ़ थाणे जी हद में एसआईयू जी कार्रवाई फायरिंग जी ॾेवट में हिकु ॾोहारी मारिजी वियो। पुलिस जो चवण आहे त साले ॻोठ में इंतिहाई घुरबल भते खोर समल काठियावाड़ी जी मौजूदगीअ जी इतलाह ते कार्रवाई कई। फायरिंग जी ॾेवट में हिकु ॾोहारीअ खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो, जंहिं दम ॾेई छॾियो। मारिजी वियल ॾोहारी जी सुञाणप जो अमल जारी आहे।

0: ऐं खानवाण में कार जो टकर लॻण सबबि फोत थी वियल निजी कंपनीअ जे ऑफिसर जे वारसनि जो एतिराज़ मुज़ाहिरो। मुज़ाहिरनि चयो आहे त 20 ॾींहं अॻु क़ौमी शाहरा ते फेरुद्दीन खे कार जो टकर हणी मारियो वियो। पुलिस बासर जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण बदिरां रुलाए रही आहे, इंसाफ़ कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
7: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
6: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
6: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
8: सुपर वाइट।
9: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख भिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
10: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
11: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
12: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
13: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
12: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
13: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
12: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
14: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
13: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347 3241 200।
8: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
15: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
11: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
13: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
14: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
13: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
14: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
13: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
14: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
13: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
14: 0331-2525-786।
13: जी हा, 2311-2525-786।
14: GAFM रेडियो नेटवर्क,
13: सिंध जो आवाज़।

तो प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना हम शुरू करने जा रहे हैं और दिस सॉन्ग इज बाय द वन एंड ओनली नबील शौकत, जिसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स. प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना

Okay, जी ब्यूटीफुल सॉन्ग और आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट के जितने भी प्रोडक्ट हैं आपकी खूबसूरती को लगा रहे हैं चार से ज्यादा चार जैसे कि मैंने बताया और सुपर वाइट के इन तमाम प्रोडक्ट्स को आप मार्केट जाके बाय कर सकते हैं जी और अगर आपको नहीं मिलते तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने हेल्पलाइन नंबर पर इनके कॉन्टेक्ट करना है और हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताने जा रही हूँ और हेल्पलाइन नंबर है जी 03 7025 68321। एक बार फिर से दोहराऊंगी वो लोग जो कि स्लो हैं और स्लो कैच करते हैं इन चीजों को तो 03 7025 68321। ठीक है जी ये कॉन्टेक्ट नंबर मुमताज हसन खान साहब का जिनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी। हेल्पलाइन नंबर है इनका दूसरा हेल्पलाइन नंबर है जी सखर और लाड़काना के लिए। पहले वाला है जी हैदराबाद के लिए हेल्पलाइन नंबर। इसके अलावा सखर और लाड़काना के लिए आप इमरान साहब को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर है 03147544462। ठीक है जी इस नंबर पे रابطہ कर सकते हैं सखर और लाड़काना वाले स्पेशली 03147544462। ठीक है जी इन नंबर्स के ऊपर आप लोग रابطہ कर सकते हैं और जी इसके अलावा सुपर वाइट के बहुत हसीन और खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स जिनमें स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम क्या कोरियन फार्मूला कमाल का फार्मूला कोरियन स्किन बनाने के लिए जी और कोरियन स्किन बनाएंगे आप लोग इसको आप डेली रूटीन में डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी यानी कि दिन और रात में पहले ही तीन दिन में आपको विजिबल और वाजे फर्क दिखते हैं और क्यों दिखते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं जी और आपकी स्किन को दे रहे हैं ब्राइटन अप लुक और इसके अलावा जी इसका जो फॉर्मूला है वो नेचुरल स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट्स के साथ तैयार किया गया है आपके डार्क स्पॉट्स को खत्म करता है आपकी डल स्किन को मजीद और ज्यादा खूबसूरत बनाता है डल नहीं रहने देता कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है और इसके अलावा जी वो तमाम तो लोग जिनकी स्किन पे एक्ने और छाइयों का इशू है तो वो भी खत्म हो जाता है तभी तो बनती है आपकी कोरियन ग्लास स्किन। तो अगर आप भी अपनी कोरियन ग्लास स्किन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग यूज करेंगे स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम सुपर वाइट वालों की जिससे आपको मिलेगा बहुत ज्यादा खूबसूरती वाला लुक और यही खूबसूरती वाला लुक जो कि आप सालों से हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप करेंगे and here comes Ali Zafar and Ali Haider with a beautiful song. इसको सुनेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के जाने बजाएंगे आपने यही जाना मेरा साथ देना है क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर बीरो किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिन चार रंग की खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी के लॉक करे ऐ चामड़न जी खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस ए झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उनसा जरूरत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला है। ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे दी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वने, जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सको था। हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट, सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनियो वेंदू। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खड़ी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निजामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतन ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230।
7: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
10: सुनते रहो GFM 90.4।

Okay, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स, जिसकी जानिब से ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सफर जो कि 11 बजे से 1 बजे तक जारी और सारी रहता है। तो 11 बजे से 1 बजे तक डेली बेसिस पे जो लोगों को नहीं पता वो जहन नशीन कर लें, एक्नॉलेज कर लें कि 11 से लेकर 1 बजे तक डेली बेसिस पे आपका और मेरा साथ रहता है। और ये जो साथ है ये सुपर वाइट वालों की जानिब से, ठीक है जी। तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स और सुपर वाइट के बहुत सारे खूबसूरत से प्रोडक्ट्स जो कि खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। और क्या खूबसूरत और कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इतने ज्यादा कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इसमें हर तरह का प्रोडक्ट सुपर वाइट वालों ने बना दिया है, यानी कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वालों ने बना दिया है। जहां आप सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम्स यूज करके अपने फेस को, अपने चेहरे को खूबसूरत बना रहे हैं, अपने फेस से तमाम मसले मसाइल का खात्मा कर रहे हैं, लाइक एक्नी, छाइयां, झुर्रियां या फिर फाइन लाइन या फिर पिगमेंटेशन जैसी बहुत सारी चीजें, तो वहीं पे आप इनका हैंड एंड फीट फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं। तो हैंड एंड फीट फार्मूला कैसे तैयार कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि आप इन्हीं के प्रोडक्ट्स में से डिफरेंट फार्मूलाज तैयार करके अपनी स्किन को चाहे

फ्लेवर्स हैं जी जो कि आते हैं इनकी पेट्रोलियम जली में, ठीक है, वो आप लोगों ने एक अदद पेट्रोलियम जली ले लेनी है और एक अदद जो है सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम लेनी है। सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम में जितनी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के बराबर आप लोगों ने पेट्रोलियम जली लेके उसमें मिक्स कर लेनी है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करके इसको स्टोर कर लें। रात को सोने से पहले इसको अप्लाई करें, ठीक है, और हैंड्स एंड फीट्स पे अप्लाई करें, अच्छे तरीके से अप्लाई करके एंड सो जाएं। सुबह उठने के बाद वॉश करें, ठीक है, एक अच्छे से सोप से। अगर सोप आपके पास सुपर वाइट वालों का है तो क्या ही बात है, सुपर वाइट वालों का ऑयल कंट्रोल जो है सोप आता है, सुपर वाइट वालों का राइस ब्यूटी सोप आता है, इनमें से कोई भी सोप आप लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेस को वॉश करने के लिए सुपर वाइट वालों की रेंज में जितने भी फेस वॉशेज आते हैं उसमें से कोई एक फेस वॉश आप लेके यूज कर सकते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और आप देखेंगे कि जहां आपका चेहरा खूबसूरत हो रहा है वहां पे आपके हैंड्स एंड फीट भी खूबसूरत हो रहे हैं। और वो तमाम तर लोग जो कि कभी ना कभी मेरे ख्याल से नहीं, मतलब हर बार हम अपने कॉम्प्लेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं होते, चाहे फिर वो मर्द हजरात हो चाहे फिर वो खवातीन हो, जो लोग अपने कॉम्प्लेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हुए या फिर कॉम्प्लेक्शन आपका जो था नेचुरली उससे भी कहीं ज्यादा डल हो चुका है क्योंकि गर्मी इतनी शदीद पड़ी थी, ठीक है जी, गर्मी की वजह से आप लोगों का कॉम्प्लेक्शन डाउन हो चुका है और जो गर्मी टैनिंग छोड़ के गई है आपके फेस पे आपकी स्किन पे उसको भी तो खत्म करना है, तो उसको खत्म करने के लिए हम यूज करेंगे सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को। और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स में सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम्स बड़ी कमाल की ब्यूटी क्रीम है जो कि टैनिंग क्या, एक्नी क्या, पिगमेंटेशन क्या, आपके सारे स्किन से रिलेटेड मसले मसाइल को हल कर देंगे, ठीक है जी। टैनिंग को खत्म करने के लिए आप लोग खासतौर पर वो तमाम तरह लोग जिन लोगों को टैनिंग भी है और जिन लोगों को पिगमेंटेशन भी है, छाइयां हैं और छाइयां किसी भी वजह से आपके चेहरे पे हुई हो तो आप यूज कर सकते हैं सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम, ठीक है, सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसके बहुत सारे फायदे में एक तो ये एंटी एजिंग क्रीम है, आपकी एंटी एजिंग स्किन को जो है आपकी उम्र से पीछे ले जाएगी, आपको जवान बना देगी, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा इसका फायदा यह है कि अगर आपकी स्किन डल है तो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगी, इसके अलावा आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगी, अगर आपके पोर्स ओपन हो चुके हैं बहुत सारी एक्नी होने की वजह से या बहुत सारी ऐसी चीजें या फिर प्रोडक्ट्स या फिर मेकओवर करवाने की वजह से जिसकी वजह से आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं तो आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगी, ठीक है, आपके डार्क स्पॉट्स को खत्म करेगी, आपके एजिंग स्पॉट्स को भी खत्म करेगी, आपकी स्किन टोन इवन टोन में आ जाएगी, आपकी जो फेयरनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए सेफ है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए इसलिए सेफ है क्योंकि इसमें नेचुरल लेमन एंड नीम एक्सट्रैक्ट मौजूद है और साथ में वाइटामिन सी की बहुत सारी खूबियां। अच्छा, अगर आप इसके रिजल्ट को डबल से ट्रिपल करना चाहते हैं, इसके रिजल्ट को मजीद और इनहेंस करना चाहते हैं तो इसमें फिर आप लोग सुपर वाइट वालों का कोई भी सिरम ऐड करेंगे, आप इसमें सुपर वाइट वालों का राइस सिरम भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप सुपर वाइट वालों का ब्यूटी सिरम जिसको बूस्टर भी कहा जाता है ये ऐड कर सकते हैं तो ये जो आपका रिजल्ट है ना वाइटामिन सी क्रीम का उसको डबल से ट्रिपल या फिर उससे भी कई ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। सुपर वाइट का ब्यूटी सिरम जिसको बूस्टर भी कहते हैं जी, और ये बूस्टर भी है सिरम भी है, इसका मकसद ये है कि आपके जो भी क्रीम का रिजल्ट है, आपके जो भी फेशियल का रिजल्ट है, आपकी ब्लीच क्रीम का जो रिजल्ट है उसको डबल से ट्रिपल कर दे तो ठीक है। आप इसमें यानी कि ब्यूटी क्रीम में भी और ब्लीच क्रीम में भी आप इसको ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड्स एंड फीट का जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें भी ऐड कर सकते हैं आप इसको। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है किसी भी फॉर्मूले का जो आप तैयार कर रहे हैं सुपर वाइट वालों के प्रोडक्ट या फिर सुपर वाइट की कोई भी ब्यूटी क्रीम जिसमें आप बूस्टर को ऐड कर रहे हैं, सुपर वाइट का ही बूस्टर लेके, ठीक है जी, तो बूस्टर आपके क्रीम के रिजल्ट को मजीद और इनहेंस कर देगा। पहले ही 3 दिन में बहुत अच्छे विजिबल रिजल्ट्स आप लोग देख पाएंगे, ठीक है जी। इनका जो सुपर वाइट ब्यूटी सिरम बूस्टर है अल्फा आर्बोटीन नाइसिनमाइड इसमें मौजूद है, वाइटामिन B3 और कोजिक एसिड है जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए हेल्दी और बिल्कुल सेफ है। तो और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है सुपर वाइट वालों के प्रोडक्ट।

ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर मैं बताती जाऊंगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए. वो हेल्प कैसे होगी जी? वो ऐसे कि जहां जहां पे अवेलेबल नहीं है वहां वहां पे अवेलेबल करवाने के लिए. और हेल्पलाइन नंबर हैं जी हैदराबाद वालों के लिए हैं. मुमताज हसन खान हैदराबाद से आप इनको राब्ता कर सकते हैं जी. 03702568321 ठीक है जी. ये हैदराबाद वालों के लिए नंबर है और सक्खर और लाड़काना वालों के लिए जो स्पेशली नंबर है वो है 03147544462 ये नंबर ठीक है. एक बार बता दूं दोबारा 03147544462 ठीक है. इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं आप लोग सक्खर और लाड़काना वाले स्पेशली और हैदराबाद वालों के लिए अलग से है जी. और सक्खर में आप इमरान साहब से रब्ता कर सकते हैं ठीक है. तो जरूर करें और जहां जहां पे अवेलेबल नहीं है वहां वहां पे अवेलेबल करवाएं प्रोडक्ट्स को. और इसके साथ सर जी हम चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि सुपर वाइट वालों के और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और आप इनसे क्या क्या तैयार कर सकते हैं. अच्छा इनके फार्मूलाज आप लोग तैयार कर सकते हैं खास तौर पे वो तमाम खवातीन जो कि अच्छा सा फार्मूला बना के अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहती हैं. तो आप लोगों ने लेना है जी एक अदद ऑयल फ्री सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम. ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम को ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम को लेने के बाद आप लोगों ने इसमें ऐड करना है जी सुपर वाइट का एक अदद बूस्टर. और अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने का इशू है तो सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम ठीक है. ये तीनों चीजें आप लोगों ने एक साथ मिक्स करनी है. मिक्स कैसे करेंगे? मेक श्योर के जो आपका जार हो या जिस चीज में आप मिक्स कर रहे हो वो स्टील की या लोहे की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. एक अच्छी सी प्लास्टिक या फिर ग्लास का जार होना चाहिए ठीक है. उसमें आप मिक्स करेंगे सो दैट इससे आपको मजीद और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और विदाउट एनी साइड इफेक्ट मिलेंगे. अच्छा मिक्स करने के बाद आप इसको स्टोर कर लें. स्टोर करने के बाद रात को सोने से पहले अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें. लेकिन फेस के ऊपर अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपका फेस जो है अच्छे तरीके से क्लेंज होना चाहिए. और वो कैसे होना चाहिए? सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश ले लें. उससे अच्छे तरीके से फेस को वॉश करें. वॉश करने के बाद खुश करें और इस फॉर्मूले को अप्लाई करें. पहले ही 3 दिन में रिजल्ट देखें जो कि आपको हैरान बना देने वाले रिजल्ट होंगे.

ओके, इसी के साथ एक और गाना प्ले करने जा रहे हैं. द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बाय किसका गाना है ये गाना है जी निहाल नसीम का. निहाल नसीम का एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि हम सुनेंगे और सुनते सुनते जाएंगे. न्यूज ब्रेक एंड फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट कॉस्मेटिक्स, सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स.

मके मुआहिदो जे स्टेट जग सियासी ऐं दिफ़ाई कमेटी जो इजलास अॼु रियाज़ में थींदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, ख़्वाजा आसिफ़ ऐं फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सऊदी अरब दौरे ते पहुतल। इजलास में तुर्की ऐं सऊदी अरब जा परडे॒ही वज़ीर, दिफ़ा वारा वज़ीर ऐं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शिरकत कंदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, परडे॒ही वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़, फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुतल। परडे॒ही तर्जुमान मौजूद पाकिस्तान इलाक़ाई अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ पंहिंजो किरदार जारी रखण वारे अज़म ते क़ाइम आहे। केपीके में दहशतगर्दीअ जी बाहि में सड़ी पियो। सोहेल आफरीदी रुगो एहतजाज ऐं धरणनि में मसरूफ़ आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमीर मक़ाम चयो आहे त केपीके में रियासत जी रट ख़तम थी चुकी आहे ऐं हुकूमत नाले का शइ न आहे। सूबो रहंदो त सियासत बि रहंदी। केपीके हिन वक़्तु लावारिस सूबो बणिजी चुको आहे। हुकूमत खे अवाम जी का बि परवाह न आहे। अदालती हुकुम बावजूद लॉन्ग मार्च लाइ हेलीकॉप्टर इस्तेमालु कयो। पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मोहसिन नकवी जो सोहेल आफरीदी ते ॻाल्हियूं नाकाम बणाइण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। सलमान अकरम राजा चयो आहे त ॻाल्हियुनि में नाकामीअ जो ज़िमेवार सोहेल आफरीदी नाहे। 72 कलाकनि दौरान केपीके जे 5 ज़िलनि में एमरजेंसी लॻाइण जो चयो वियो। एमरजेंसी लॻाइण जी इजाज़त नथा ॾेई सघूं। ॿुधायो वञे त पीटीआई वफ़द आॾो रखियल मुतालबनि में कहिड़ो मुतालबो ग़ैर आइनी या वस खां ॿाहिरि आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त असांजो पहिरियों मुतालबो टीटीपी ऐं दहशतगर्दनि जी मज़म्मत, ॿियो केपीके में दहशतगर्द ठिकाणनि जो मुकमिल ख़ात्मो ऐं टियों अफ़गानिस्तान बाबति परडे॒ही पॉलिसी ते अमल करण आहे। असांजो असल मक़सदु रोकण न पर दहशतगर्दीअ जो मुकमिल ख़ात्मो आहे। सरकारी कर्ज़नि में 10 सालनि दौरान 340 सैकड़ो जी तारीख़ी वाधि जो इंकशाफ़। 10 सालनि दौरान सरकारी कर्ज़नि में 78,000 अरब रूपयनि जी वाधि थी, जंहिंखां पोइ सरकारी कर्ज़नि जो काथो 86,700 अरब ताईं पहुतो। केपीके में सिक्योरिटी फोर्सेज जी फितनल ख़ारिजीन ख़िलाफ़ कार्रवाई, 3 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि डेरा इस्माइल खान में ॻुझी इतलाउ ते कार्रवाई करे 3 दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि दहशतगर्दनि जूं कार्रवायूं दहशतगर्द नेटवर्क खे कमज़ोर करण लॻियूं आहिनि। एमक्यूएम अॻवान फारूक सत्तार चयो आहे त माज़ी में पेपर लीक या बेज़ाबतगीअ जी का बि शिकायत न हुई। सिंध जे समूरनि वसीलनि ते वॾेरनि ऐं जागीरदारनि जो कब्ज़ो आहे। सिंध जे शहरी इलाइक़नि जे नौजवान जो मुस्तक़बिल तबाह कयो पियो वञे। सिंध में करप्शन जूं कुहाड़ियूं सभिनी जे आॾो वाखियूं आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: छा तव्हां जोड़न जे सूर, पुठन जी तकलीफ़, कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न, पुठन, कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
7: खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
9: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842। मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
9: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
9: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दी मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग. सॉन्ग के साथ साथ हम चल रहे हैं आगे और सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको हम बताएंगे. और सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स जो कि बहुत खूबसूरत बना देते हैं और आप इससे डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज भी तैयार कर सकते हैं. जी डिफरेंट फार्मूलाज कैसे तैयार करेंगे? सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स को ले लेंगे और सुपर वाइक की ब्यूटी क्रीम लेंगे. जी कोई भी लाइक इसमें से आप सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स में से कौन सी ब्यूटी क्रीम लेंगे? वाइटामिन सी क्रीम ले सकते हैं, सुपर वाइक की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम ले सकते हैं. इसके अलावा जी सुपर वाइक की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम ले सकते हैं. अच्छा, जिन लोगों को छाइयों का इश्यू रहता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, वो वाइटामिन सी क्रीम यूज करें. ठीक है, इसके अलावा जो लोग कोरियन ग्लास स्किन हासिल करना चाहते हैं तो कोरियन ग्लास स्किन जो है आपको मिलेगी स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जो कि सुपर वाइट वाले स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ बनाते हैं. तो अगर आप इसमें सुपर वाइट के बूस्टर को ऐड कर लेते हैं, सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर, तो सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर अल्फा आर्बुटीन नाइसिनामाइड विटामिन B3 कोजिक एसिड के साथ आपकी क्रीम के रिजल्ट को डबल से ट्रिपल करके आपको पहले 3 दिन में विजिबल रिजल्ट देगा. ठीक है, तो आप बूस्टर को ऐड करें और बूस्टर को ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करें, स्टोर कर लें क्रीम को. और क्रीम को स्टोर करने के बाद ना रात को सोने से पहले अपने फेस के ऊपर जरूर अप्लाई करें. एंड अप्लाई करने के बाद देखें कि पहले 3 दिन में आपको कितने खूबसूरत रिजल्ट्स मिलते हैं. अच्छा, इसको मजीद और एनहेंस करने के लिए सुपर वाइट का कोरियन फार्मूला स्ट्रॉबेरी फेस वॉश को जरूर जो है आपने यूज करना है. इसको यूज करना ना भूलें. ठीक है, दिन में जितनी भी बार फेस वॉश करें इसी से करें. और आप इसको जितनी भी खवातीन हैं और वर्किंग वुमेन्स हैं वो अपने साथ इसको बैग में भी कैरी कर सकती हैं. बैग में कैरी करके आप जो है इसको कहीं भी अपने साथ ले जा सकती हैं, वहां पे फेस को वॉश करके. ठीक है, क्लिंजिंग बहुत जरूरी है फेस की. जहां आप क्लिंजिंग करना छोड़ते हैं वहीं पे मसले खराब होते हैं.
1: करोगे सब
0: ठीक है, तो ये खास ख्याल रखना है और खास ख्याल रखते हुए ना इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है. और इस्तेमाल करके मुझे जरूर जो है फीडबैक अपना देना है. हेल्पलाइन नंबर बताऊंगी गाने के साथ.

जी गाने को चेंज करेंगे और गाने के साथ साथ आप लोगों की लाइव कॉल को जो है एंटरटेन करेंगे 03000113488 और साथ में सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताती जाऊंगी. सो डायरेक्ट आप उनसे कॉन्टेक्ट करके अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में इन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा सकें इजीली. तो हैदराबाद वाले डायल करेंगे 03702568321. मुमताज हसन खान साहब का ये नंबर है 03702568321. इसके अलावा जी तखर और लाड़काना वाले डायल करेंगे 03140377544 62. इमरान का इमरान साहब का ये नंबर है जी. आप सखर लाड़काना वाले जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो इनसे कांटेक्ट करके अपने गरीबी मार्केट्स और एरियाज में इन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा सकते हैं. सोनिया दिल नहीं लगता तेरे

अगले साथ साथ कॉमेंट्स को इंटरटेन करते हैं जी. गुलाम हैदर फुलपोटो हमें सुन रहे हैं, वाजिद सिंधी हमें सुन रहे हैं, सिद्रा बाजी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी जी और बिल्कुल थैंक यू सो मच. और इसके अलावा नवी दोस्त हमारे साथ मौजूद है जी, रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं. इसके अलावा जी मैसेजेस आप लोगों के और साथ में आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स, तो कॉल्स ले लें क्या, हम कॉल्स लेते हैं, एक कॉल लेते हैं उसके बाद गाने की तरफ चलते हैं. हेलो हेलो ओके कॉल ड्रॉप हो चुकी है. सुपर वाइट के सुपर डुपर बना देने वाले प्रोडक्ट और खूबसूरत से प्रोडक्ट.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अरे न खुश बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइट था डैमेज डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि 4 रंग जी खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं 4 रंग जी खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरन खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ 3 ॾींहनि में। जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचण, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजनि खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
6: तव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842। मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
8: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 03704495244।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
11: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 02-347-3241-230।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट एंड सुपर वाइट के अलावा जी अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले जो कि सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आपको बनाते हैं खूबसूरत, तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जहां जहां अवेलेबल नहीं है आज ही अवेलेबल करवाएं। एंड हेल्पलाइन नंबर है जी हैदराबाद के लिए मुमताज हसन खान हैदराबाद से आप इनको राबता कर सकते हैं, यानी कि ये हैदराबाद से हैं, आप इनको राबता कर सकते हैं जितने भी हैदराबाद वाले लिसनर्स हमें सुन रहे हैं। ठीक है 03 70 25 68 3 2 1 0 3 70 25 68 3 2 1। ठीक है जी ये हैदराबाद वालों के लिए मुमताज हसन खान साहब के नंबर। इसके अलावा जी सखर और लाड़काना वाले जो है इमरान साहब से राबता कर सकते हैं, इमरान साहब का नंबर है जी 03 14 77 5 44 62 03 14 77 5 44 62। ठीक है जी तो जरूर रब्ता करें और जहां जहां अवेलेबल नहीं है वहां वहां अवेलेबल करवाएं। इनकी फेस वॉचेस की बड़ी अच्छी रेंज जो है दस्तियाब है मार्केट में, तो जरूर आपने जो है फेस वॉचेस की रेंज को भी नहीं भूलना और फेस वॉचेस जो कि आप एक अच्छा सा फेस वॉश अगर तलाश करें, जितनी खवातीन है वह हमेशा एक अच्छा फेस वॉश तलाश कर रही होती है उनको एक अच्छा फेस वॉश नहीं मिल रहा होता है, तो इतने सारे अच्छे फेस वॉश जो कि इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं अक्सर कॉस्मेटिक्स वालों ने, सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश एवोकाडो की बहुत सारी खूबियों के साथ, ठीक है 100 ml की पैकेजिंग के अंदर मिलते हैं ये तमाम जो जितनी भी फेस वॉशेज हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है सुपर वाइट का विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस वॉश भी है जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश है ये भी आप लोग ले सकते हैं इसी, और मेक श्योर जब आप इसकी ब्यूटी क्रीम यूज करें तो सेम ही आप लोगों ने इसका फेस वॉश भी यूज करना है, और जो लोग सुपर वाइट की एंटी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज कर रहे हैं यानी कि एंटी टर्मेरिक क्रीम यूज कर रहे हैं तो टर्मेरिक क्रीम के साथ ना टर्मेरिक फेस वॉश भी आता है इनका, वो ले लेना है। सुपर वाइट का राइस कोलेजन फेस वॉश आता है, सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम के साथ इसको यूज करना है, डबल से ट्रिपल और ट्रिपल से कई ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है और इनकी पेट्रोलियम जली जो है बड़ी कमाल की है, बड़े अच्छे अच्छे फ्लेवर्स में आती है जी और बहुत अच्छे फ्लेवर्स, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इनके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जी, लेमन के अंदर आपको जो है ये मिल जाती है, इसके अलावा इनकी पेट्रोलियम जली कोकाओ बटर के फ्लेवर में मिल जाती है, पिंक कलर के फ्लेवर में मिल जाती है और इतनी कमाल की पैकेजिंग और जार भी इतना कमाल का, आप इसे फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं हैंड्स एंड फीट्स के लिए, जैसे कि मैंने बताया सुपर वाइट की कोई भी ब्यूटी क्रीम लेके उसकी क्वांटिटी के बराबर सुपर वाइट की पेट्रोलियम जली ऐड करें, तैयार है आपका हैंड्स एंड फीट फार्मूला, उसको रात को सोने से पहले अप्लाई करें, जहां आपका फेस खूबसूरत हो रहा है वहां पे आप अपनी हैंड्स एंड फीट्स को भी मजीद उतना ही खूबसूरत बनाएं जितना कि आपका फेस है। ठीक है जी एक क्वालिटी होनी चाहिए दोनों में। इसी के साथ हम गाना चेंज करने जा रहे हैं एंड द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल बाय आतिफ असलम एंड द सॉन्ग कॉल्ड हूँ इश्क में, इसको हम सुनेंगे और आगे चलेंगे।

0: ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ आप लोगों की कॉल्स को एंटरटेन करते हैं हम. और नेक्स्ट कॉलर लेने जा रहे हैं, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. जी हेलो.
1: वालेकुम सलाम, मोहम्मद हनीफ शाह, आपका कॉल लेनी, गुड न्यूज ला कश्मीर से.
0: अरे वाह मोहम्मद हनीफ शाह भाई, इतने दिनों बाद कॉल कर रहे हैं, किधर से आए हैं?
1: आपको छोड़ा तो नहीं मैं.
0: मुझे छोड़ा तो नहीं, ये बात भी है, लेकिन इतने दिनों बाद कॉल की है तो मुझे बताया कैसे. ठीक ठाक,
1: कुछ दिन दूसरों को भी मौका देना चाहिए ना.
0: हाँ लेकिन बहुत ज्यादा दिन आपने मौका दे दिया. इतने ज्यादा मौके नहीं देते. अच्छा मुझे, हाँ मुझे बताएं कि कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, आप सुनाएं.
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ बिल्कुल प्रोग्राम सुनते हैं आपका. ये कम से कम कभी कभी नशरियात बस कम आती है, लेकिन प्रोग्राम आपका सुनते हैं.
0: प्रोग्राम मेरा सुनते हैं, ये बात है कि प्रोग्राम सुनते हैं. अच्छा मुझे बताएं कि प्रोग्राम किसके तामुन से है आजकल?
1: प्रोग्राम नाम थोड़ा मुश्किल है, आप एक बार बताएं फिर रिपीट करूंगा.
0: नाम मुश्किल नहीं है, तभी तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. अगर कोई मुश्किल नाम वाली होती ना तो मैं तो खुद ही नहीं लेकर आती आपके लिए प्रोडक्ट. आप लोगों को याद ही नहीं होती आप क्या मार्केट जाते हैं क्या लेते, इसलिए आसान नाम वाली प्रोडक्ट हम लेकर आए. नाम भी आसान है, रिजल्ट भी कमाल के हैं, और नाम है सुपर वाइट.
1: सुपर वाइट,
0: ठीक है, सुपर वाइट नाम है. अब याद कर ले, जहन नशीन कर ले.
1: अभी नशीन कर ले, क्योंकि मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ ये नाम.
0: ओके ठीक है, तो अब सुनते रहें और प्रोडक्ट्स को भी यूज करें, और मैं चाहूंगी कि आप यूज करें.
1: हाँ क्योंकि मसरूफियात थी ना, आप जो सखर में ही आना जाना था सर्टिफिकेट के हवाले से, तो मैं प्रोग्राम नहीं सुन सका, ये इसलिए आज पहली मरतबा सुन रहा हूँ. तो कॉल भी की, प्रोग्राम भी सुन रहा हूँ. सुपर वाइट क्योंकि जहन आजकल बहुत तरफ होता है इंसान का.
0: बस जहन में ये रखें कि रंग चिट्टा करने वाली क्रीम है, चिट्टे को इंग्लिश में व्हाइट कहते हैं, तो बन गया सुपर व्हाइट.
1: ठीक है, शक्कर से ही खरीदेंगे.
0: चलिए ठीक है, जरूर लीजिएगा. और कुछ कहेंगे?
1: बस प्रोग्राम आपका बहुत बहुत बेहतरीन होता है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन हमारा दिल बस कहता है कि आपको कॉल करें. प्रोग्राम जब सुनते हैं तो फिर रहा नहीं जाता,
0: प्रोग्राम सुनते हैं तो रहा नहीं जाता, कॉल करनी पड़ती है. बस यही बात तो है ना, यही बात है कि आप लोग खिंचे चले आते हैं. थैंक यू सो मच. और कुछ कहेंगे?
1: बाकी सब सुनने वालों को सलाम, खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे.
0: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें जी. अल्लाह हाफिज. 03000113488 के ऊपर बहुत सारी लाइव कॉल. जिंदगी गुलजार है बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स.

अच्छा इस्मा किशोर कमेंट कर रहे हैं, आपके शो को 2 से 3 दिन से सुन रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है सवाल टॉपिक ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मतलब आपको बात करने के लिए मुद्दा चाहिए, मुद्दे पे बात करना चाहते हैं आप। ओके ठीक है, ये तो आप लोगों के लिए हम मुद्दा लेकर आएंगे, यानी ये टॉपिक लेकर आएंगे। जो बीत गया उसमें मुझे ना शो को डिजाइन करने का वक्त नहीं मिल सका, याद रहे। बट चीजें करते करते बेहतर हो जाती हैं, चीजें करते करते मजीद और खूबसूरत हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है और मंजिल आपकी यही है, मंजिल का नाम है, जिंदगी गुलजार है। ठीक है, जो मंजिल को खूबसूरत बनाने के लिए इस सफर को स्पॉन्सर कर दिया है जी सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स वालों ने। ठीक है, तो ये बात है। हाफिज यूनस बाबर हमें सुन रहे हैं, जबरदस्त शो लग रहा है इनको। रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, नाइस शो लग रहा है, हैदराबाद से सुन रहे हैं जी, हैदराबाद वाले, वाओ। गाना खत्म हो चुका है और गाना हम दूसरा प्ले करेंगे, और दूसरा जो गाना हम प्ले करेंगे वो होगा बहुत अच्छा। और वैसे तो हम सारे गाने ही अच्छे प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम और भी ज्यादा अच्छे गाने लगाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट मेरे ख्याल से हम जाने की तरफ मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जाना पड़ेगा हमें क्योंकि जाने का वक्त करीब आता जा रहा है। सो जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स, बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स, जिनके हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताते जाऊं हैदराबाद वालों के लिए। मुमताज हसन खान साहब से राब्ता कीजिए 0370256832 1। सखर और लाड़काना वाले डायल कर सकते हैं 0314775442। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं जी, इनको आप लोग जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में अवेलेबल करवा सकते हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स सुपर वाइट के, जिसमें वाइटामिन सी ब्यूटी क्रीम, स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की फ्रैकल ब्यूटी क्रीम, इसके अलावा सुपर वाइट की ऑयल फ्री एंटी एक्ने क्रीम, और सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम, और सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर, और इनके फेस वॉशेस की बड़ी जबरदस्त रेंज। तो ये तमाम खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स, और इसी के साथ ये खूबसूरत सा सफर यहीं खत्म होता है, कल दोबारा शुरू होने के लिए। ठीक है, तो कल सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे, सुनना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज।

केपी के दहशतगर्दी जी बाह में सड़े पयो। सुहेल आफरीदी रुगो एहतजाज ए धरणन में मसरूफ है। वफाकी वजीर अमीर मकाम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे ते केपी के में रियासती रिट खत्म थी वई आहे ऐं हुकूमत नाले का शइ नाहे। सूबो रहंदो त सियासत बि रहंदी। सूबाई हुकूमत खे अवाम जी का बेपरवाह नाहे।

पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मोहसिन नकवी जी सोहेल आफरीदी ते ॻाल्हियूं नाकाम बणाइण वारे इल्ज़ाम खे रद्द करे छॾियो। सलमान अकरम राजा चयो आहे त ॻाल्हियुनि जी नाकामी जो ज़िमेवार सोहेल आफरीदी न आहे। ॻाल्हियुनि दौरान केपीके जे 5 ज़िलनि में एमरजेंसी लॻाइण जो चयो वियो। एमरजेंसी लॻाइण जी इजाज़त नथा ॾेई सघूं। ॿुधायो वञे त पीटीआई वफ़द आॾो रखियल मुतालबनि में कहिड़ो मुतालबो ग़ैर आइनी या वस खां ॿाहिरि आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त असांजो पहिरियों मुतालबो टीटीपी ऐं दहशतगर्दनि जी मज़म्मत, ॿियों केपीके में दहशतगर्द ठिकाणनि जो मुकमिल ख़ात्मो ऐं टियों अफ़गानिस्तान बाबति परडे॒ही पॉलिसीअ ते अमल करणु आहे।

जी आप सुन रहे हैं वाई टेंशन जी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है जनाब जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप लोगों की खूबसूरती का जिम्मा उठाए फिरते हैं जनाब, अगर आप भी जी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आपको भी वो वाले रिजल्ट मिल जाएंगे जो कि भाई उन लोगों को मिल चुके हैं जो जी स्किन ब्यूटी क्रीम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे पूछिए तो जरा कि उनको कितने प्यारे रिजल्ट मिले हैं। जो लोग आपको ये बताए ना कि भाई जी स्किन ब्यूटी क्रीम हमने इस्तेमाल कर लिए, तो बैठकर तसल्ली से उनकी बात सुन ले और आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि भाई सिद्रा जो भी बातें बताती है वो बिल्कुल सही बताती है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती के ऊपर इस तरह से वर्क करती है कि भाई जब आप देखेंगे अपना चेहरा तो खुद ही कहेंगे कि भाई ये तो कमाल धमाल हो गया। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन का फेस वॉश है, ये दोनों प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप किसी भी दुनिया के कोने से हमें सुन रहे हैं, किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है, किसी भी गाँव से आपका ताल्लुक है, आप हर अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा सकते हैं और इजिली जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। अचानक अलावा असा प्रोग्राम में थोड़ा अगते वधूं था, प्रोग्राम जी सवाल जी तरफ अचूं था, क्योंकि प्रोग्राम का जो टॉपिक होगा ना वो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं। तो आज खैर से फाइनली टीचर्स डे है। हाँ जी बिल्कुल, सुबह से उठे ने देखा हर तरफ टीचर्स डे टीचर्स डे। बिल्कुल जी, तो मेरी तरफ से तो भाई सब जितने भी टीचर्स हजरात मुझे इस वक्त सुन रहे हैं सबको हैप्पी टीचर्स डे। और टीचर्स का जो रुतबा है ना, टीचर्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। अगर टीचर्स ना होते तो हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होते, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं होते, हमारे पास कुछ भी नहीं होता समझ लीजिए। तो टीचर्स का हमारी लाइफ के अंदर बहुत अहम और बहुत अच्छा वाला रोल है और उसे हमेशा याद करना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर आज के प्रोग्राम में सवाल की बात करें तो मेरा आप लोगों से जो सवाल होने वाला है वो हम जरा आज अपने उस्तादों को याद करेंगे और वो कैसे, क्योंकि आप मुझे ये बताएं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा टीचर रहा हो जिसने आपसे कुछ कहा हो और आपको वो आज तक याद है, क्योंकि काफी टाइम गुजर चुका आपको अपने स्कूल छोड़े कॉलेजेस छोड़े। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कोई बात जो कि आपको अपने टीचर की याद रह चुकी है कि भाई फला टीचर ने मुझे ये बोला था और ये बात जो है ना वो काफी मोटिवेशनल आपकी लाइफ में साबित हुई है और आप जब भी उसी बात को याद करते हैं तो आपके चेहरे पर स्मेल आ जाती है और आप अच्छा सा फील करते हैं। तो आप मुझे बताएं ऐसी कोई बात जो कि आपको, हाँ जी, आपके टीचर ने बोली थी और वो आपको बड़ी अच्छी लगी थी। उन्हें कहा अलावा जी को बस अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुनने वाले हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो इतने प्यारे खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर किया करें। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आपकी स्किन के लिए क्यों जरूरी है ये मैं आपको पूरे प्रोग्राम में बताती रहूंगी। तो आप हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हम बहुत सारे लोगों को बता पाए कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप भी अपने चेहरे को चमका सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के यूज से। और साथ ही साथ मुझे बताइए आपका कोई ऐसा टीचर जिसने आपको कोई ऐसा वर्ड बोला हो, ऐसा कोई जुमला बोला हो जो अभी तक आपको याद है, वो ऐसा मोटिवेशनल की तरह आपकी जिंदगी में काम किया उस वर्ड ने, उस जुमले ने, ये आप मेरे साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जनाब, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को हम कहाँ से अवेलेबल करा सकते हैं या फिर कैसे अवेलेबल करा सकते हैं, कई मरतबा तो ये वाला सीन हो जाता है कि आप लोग नंबर जो है ना वो नोट नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि भाई आप नंबर हमें बताते रहें प्रोग्राम में ताकि हम नोट कर सकें, और नंबर के ऊपर रब्ता करके हम भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराएं, तो बिल्कुल आप अवेलेबल करा सकते हैं। अभी आपको नंबर बताने लगी उनके ऊपर जरा गौर कीजिएगा, नंबर को जल्दी जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डायल करके अवेलेबल कराए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन के फेस वॉश को। उन्हें कहा अलावा नंबर की तरफ अचूं था, नंबर आए जनाब ओके जी, पहला नंबर है 033-27-38-43-09 बोरी 373-73-74-09
84 309 ऐं ॿियो नंबर आहे 03125025907 ॿुड़ी 312 50 25 907. ही ॿई नंबर जेके तव्हांजी आसानी जे लाइ आहिनि, तव्हां हिन नंबर से राबतो करे सघो था, कॉल करे सघो था या वरी मैसेज करे सघो था। तारिक भाई तव्हांखे रिस्पॉन्स ॾींदो। बाबा ऐं तारिक भाई जेको आहे वेठो आहे तव्हांजे लाइ, त केॾी महिल असांजा लिसनर असांखे कॉल कनि था ऐं किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराइण लाज़मी थी चुको आहे। सो तव्हां बि अवेलेबल करायो, टेक्स्ट मैसेज कयो या वरी कॉल करे सघो था। सो अवेलेबल कराईंदा रहो ऐं इस्तेमालु कंदा रहो ऐं सुहिणा थींदा रहो। और जी पोस्ट को लाइक और शेयर रखा करें, ठीक है? शेयर करने से भाई मोहब्बतें बढ़ती है, शेयरिंग इज केयरिंग होती है। उनके अलावा अचूं तो तुम्हारे कॉमेंट्स की तरफ। रहते जैन अली हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि उस शख्स में क्या अच्छा है, अच्छे अच्छों से मुझे मेरा बुरा अच्छा है। हाय अल्लाह क्या बात है। कहते हैं कि उसे कहना दिल की चाहत हो तुम, वरना बा खुदा इन आंखों ने बहुत हसीन लोग देखे या तो हकीकत। कहते हैं कि फकत एक का होने में ही हुस्ने बंदगी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, तमाम सही आयो, बिल्कुल सही आयो। नजर मोहम्मद भट्टी हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम। कहते कैसी है सिस्टर? मैं ठीक हूँ प्यारे भाई, आप हमें मटियारी से सुन रहे हैं। सिस्टर आप सिर्फ निगत नाज का गाना चलाती हो, शाजिया मारवी के सॉन्ग भी चलाओ ना। हाजिर हाजिर, मैं कोशिश कदम शाजिया मारवी जा गाना भी तक बुधराइंदी। और फैसल अहमदानी हमारे साथ ही, वालेकुम असलम। फैसल अहमदानी लिखते हैं, सोच समझ कर रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम, जब ये चलती है किनारा नहीं मिलता, जब ये डूबती है तो सहारा भी नहीं मिलता। या तो हकीकत आए बिल्कुल। और जैन कहते हैं कि तेनों सामने बिठा के तस्वीर बनावा, ये सॉन्ग लगा दो मैं दिसां थी बिल्कुल ना गाने के हलाए वेठनासी। परवा कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आप अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, आई होप यू आर फाइन। यस मैं ठीक हूं, आप बताएं कैसी हैं। और बरकत रमादानी जमाली बलोच में सुन रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। जेकब अब्बासी आपने मुझे ज्वाइन किया है? नहीं भाई, आपने मुझे बलूचिस्तान से ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और फैसल में ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में है। और तारिक भाई हमारे साथ हैं, तारिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, और आपको भी वेलकम हो गया। तारिक भाई लिखते हैं कि वसीम ट्रेडर्स कंडियारो, वसीम भाई हमारे बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और कंडियारो सिटी में हर शॉप पर अवेलेबल कराई हुई है उन्होंने। क्या कहने भाई, वसीम भाई की मेहनत को सलाम। और यहाँ पर आप सब लोग जितनी भी डी स्किन की टीम है, जितने भी वाइटेश की टीम है, वो सारे भाई अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप सब लोगों को इस मेहनत का फल मिलेगा और अल्लाह पाक आपके रोजी में बहुत बरकत देगा इंशाल्लाह। भाई ऐसा सब एक ही टीम आयो। और परवा कहती हैं आप ही, आज पूरी दुनिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये ऐसा से सवाल भी मैंने पूछ लिया, जवाब दीजिए मुझे। और उन्हें कहा अलावा फैसल कहते हैं कि सब दोस्तों का सलामो कीजिए। वालेकुम अस्सलाम अली रजा लगारी, वालेकुम अस्सलाम गोठ जाम खान लगारी से। कहते हैं सिस्टर कैसी हैं आप? शो तमाम नाई से सॉन्ग तू मुखे वणी थो या गाल बिया, मां कोशिश कयां थी गानो हलाईंदासीं। डेडिकेट अज़र लगारी, आकिब लगारी, आज गुलाम मुस्तफ़ा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, सिस्टर ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है, जो हम यूज कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सिस्टर सिद्रा ऐसे ही बिल्कुल प्यारे भाई, यूज करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप लोगों को नेचुरली खूबसूरत बना रही है। यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप बताएं तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत निखार आपके चेहरे पर आ चुका है, आपके चेहरे की स्किन टाइट हो चुकी है, आपके चेहरे पर रिंकल्स फ्रिकल्स क्रिकल ये सब चीजें खत्म हो चुकी है, आप दिन ब दिन ग्लो करते जा रहे हैं, ये कमाल बताइएगा उनको डी स्किन ब्यूटी क्रीम का है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि फायदे ही फायदे है मेरी जान, ट्राई तो करके देखिए। और जनाब पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर ओके जी अब्बासी भाई को कहते हैं कि लिखा है, अच्छा आपने लिखा है कि हर कोई दुनिया को बदलने का सोचता है लेकिन कोई खुद को बदलने का नहीं सोचता। हम उंगली दूसरों पर उठाते हैं, मुआशरा खराब है, लोग अच्छे नहीं, हालात बदलने चाहिए मगर आईने में खुद को देखने से डरते हैं। या गाल तो मां हमेशा चवंदी आहियां त बाबा दुनिया खे त तव्हां बाद में चेंज कयो, तब्दील कयो, पर पाण खे त तब्दील करे ॾिसो, छो त अगर आप अपने अंदर चेंज लाएंगे तो समझ लीजिए दुनिया ही अच्छी हो गई है। बाबू खान अबड़ू हमारे साथ कहते हैं आपका शो शौक से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया बाबू खान अबड़ू। और किशोर भाई कहते हैं कि आयो आयो किशोर आयो, अल्लाह जाए बता। आपको देखकर पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ जाती है। चलिए आप पोस्ट पर बने रहिए, यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का।
शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आ जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, अपनी ना सीट पर बैठी रहिए और मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। White Asian D Skin Beauty Show is sponsored किया जा रहा है D Skin Beauty Products के तावन से। तो D Skin Beauty Products का यूज कीजिए और आप भी खूबसूरत हो जाइए, ठीक है।

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। डीए FM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।
2: अरे मैं खुश्क और बीरोनों की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिंमें आहिन चार रंग की खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उनजी नमी के लॉक करे ऐं चांदरन जी खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइंस ऐं झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन ईहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
3: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ टे ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
7: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतन ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

प्रकरण मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होती हैं जनाब, और क्यों ना हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया दीवानी है। आपको भी तो पता चले कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं तो कुछ क्वालिटीज हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए, पहचान लीजिए। अगर आप जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आप सही प्रोडक्ट परचेज करके आए, क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि कुछ हमारे मासूम से लिसनर्स हैं जो जाते हैं परचेज करने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, लेकिन दुकानदार उनको कोई और प्रोडक्ट दे देता है और फिर वो लेकर आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई बाजी असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो हणू था पर असा के रिजल्ट ओड़ो न मिलो आज तो तुम बुधाईंदा तो अगर तुम दिसंदा तो वह डी स्किन ब्यूटी क्रीम होंगी ही को। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कुछ निशानियों हैं जो तुम्हें खबर हो जाए जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम परचेज कर वो तो तुम फुल तैयारी से वो तुम कोई भी दुकानदार बेवकूफ न ठाए सके। सो बिल्कुल जी, आप भी जाइए और परचेज कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ये सब लोगों के लिए, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, क्योंकि आपके घर का, हाँ जी, ये भी रूल होता है ना कि हर एक जो लोग होते हैं वो अपने लिए अलग अलग तरह तरह के प्रोडक्ट्स की तलाश में होते हैं। वो चाहते हैं कि भाई हमारे लिए हमारे हिस्सा वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, और ऐसा वाला सीन हो जाता है।

करे सगो ऐं तव्हां बि सुहिणा थी सघो। अच्छा ये मौजूद वाजिद सिंधी अदी कीअं आहियो मीरपुर ख़ासि खां तव्हां सुनो प्रोग्राम ॿुधो पिया अदी सफ़ा भली आहे तव्हांजो हाल अहिवाल कीअं आहियो ठीकु ठाक आहियो मज़े में आहियो। इक़बाल आशारीअ में सुन रहे हैं जी मीरपुर ख़ासि इक़बाल भाई आपको भी वेलकम इन ख़ुशियों में दे रहे। अब्दुल गफ़ार भाई वालेकुम अस्सलाम सलामत रहे जी आप भी मेलसी से आप हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद मेलसी में भी मिल रही है आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम। दानिश खान हमें सुन रहे हैं कराची नाजमाबाद मेरा बेटा अब्दुल्ला सलाम कह रहा है वालेकुम अस्सलाम आप दोनों को वेलकम कहते हैं। अली शेर बिरोही हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम प्यारी बहना सिद्रा कैसी है शो बेहतरीन हो रहा है। अली शेर बिरोही फ्रॉम मीरपुर बठोरो हमारे सिटी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल अभी तक नहीं हुई है। अली शेर आपके बिल्कुल करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा देते हैं ठीक है। आबिद भाई को बोलेंगे या फिर हम तारिक भाई को बोलेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाबू खान अबड़ो कहते हैं मेरा मैसेज रीड नहीं करोगी कर लिया भाई कर लिया। और फहीम भाई कहते हैं कि आ गई है धीरे धीरे हर अदा बाजार की लग गई है तुमको भी शायद हवा बाजार की क्या खरीदा क्या है बेचा आगे इस बाजार में जाते जाते कुछ हकीकत तो बता बाजार की। ओके फहीम भाई वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम मदद अदा क्या हाल है आपके हम भी आ गए बहुत शुक्रिया। अच्छा आबिद भाई कहते हैं कि सिस्टर नौशेरो फिरोज के शॉप नौशेरो फिरोज की शॉप है अली वारिस जनरल स्टोर बहुत अच्छी सेल कर रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम प्लीज इसका नाम लें और नौशेरो फिरोज कस्टमर्स अली वारिस जनरल स्टोर पर ब्यूटी क्रीम लें डिस्काउंट के साथ क्या बात है भाई। नौशेरो फिरोज वाले लोगों की तो लॉटरी लग गई आपके लिए भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम वहां पर मौजूद है और वारिस भाई जो है ना वो आपको डिस्काउंट के साथ देंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तो आप जाइएगा वारिस जनरल स्टोर पर और वहां से जाकर आप परचेज कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए। जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि भाई हमारे एरिया में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे तो नंबर डायल करने से पहले आप एक और भी काम कर लिया करें कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाएं वहां से पहले मालूम लें कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो बढ़िया परचेज कीजिए नहीं अवेलेबल तो डायल करेंगे नंबर्स जो कि आप लोगों को पूरे प्रोग्राम में बताऊंगे। सो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: सबर अश्ना।
1: भैया गर्मी को क्या हुआ है, ये जा ही नहीं रही है। अच्छा रात का टाइम जो है वो तो थोड़ा सही है, रात के टाइम तो सही थोड़ा सा मौसम हो जाता है, लेकिन दिन में तो वही गर्मी है ना, ये दिन की गर्मी का क्या होगा, ये कब जाएगी। भाई अब आप देख लीजिए कितनी ज्यादा गर्मियां चल रही है, पहले ऐसा होता था ना कि भाई जितनी गर्मियां होती थी उतनी सर्दियां आती थी, लेकिन अब तो ऐसा है कि खाली मुझे लगता है कि दो महीने, ज्यादा से ज्यादा दो महीने आ रहे हैं सर्दी के। लेकिन ऐसा वाला सीन है कि अगर आप ये सोच रहे हैं भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट तो हम को जरा बता दीजिए जो हम गर्मियों में भी लगा सके और सर्दियों में भी लगा सके, क्योंकि ज्यादातर तो यहाँ पर पाकिस्तान में गर्मियां ही होती है। तो आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है, ये हर सीजन में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है और हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज करने के बारे में, तो लाजमी जाइएगा, परचेज कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात तो जरा याद ही रखिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि इसे डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो क्या कि स्किन से रिलेटेड फार्मूले बनाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश, ये दोनों चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तो ये बात है जनाब कि ये 2-in-1 फार्मूला है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

ओके हमारे साथ रशीद कोसो भाई, आप हमें सुन रहे हैं जी हैदराबाद से। हैदराबाद से आप कहते हैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी वेलकम हो गया। और हमारे साथ फैसल अहमदानी लिखते हैं कि हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रग जान में उतर जाएगा। आय हाय क्या बात है, क्या बात है। और शौकत अली कहते हैं एक्सीलेंट शो, शौकत अली फिलोपोट्रो हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है भाई को वेलकम कहते हैं। और किशोर भाई कहते हैं कि अदा अज 20 सालन का पोए मुंजी आईडी जो नालो चेंज कयो आ, स्मार्ट किशोर मां चेंज करे किशोर कुमार रखियो आई यो तां भलो काम कयो तवां जे नाले गाले छ मान चढ़न पया हाने दिसो वा चढ़ा जाता ही बरकरार रहे या फिर थोड़ो सुधारो अच सके तो सो अच्छा लगा। चेंजिंग लाइफ के अंदर जरूरी होता है।

क्या बात है जनाब, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताएं तो पता तो चले हमें कि ये जो इतने खूबसूरत लोग हैं ये भी टी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर फहीम भाई, आपने लिंक शेयर कर दिए, ओके आई ट्राई, आपका गाना लगा देंगे। आबिद भाई लिखते हैं कि नौशेरो फिरोज के कस्टमर से गुजारिश है कि अली वारिस जनरल स्टोर रेशम गली पर जाएं और वहां से टी स्किन ब्यूटी क्रीम डिस्काउंट के साथ लें। क्या बात है भाई, सुन लीजिए। नौशेरो फिरोज वाले लोग तो भाई भागते हुए जाएंगे टी स्किन ब्यूटी क्रीम लेने। अच्छा आबिद भाई, अब आपने ये बोल दिया है कि भाई नौशेरो फिरोज वालों को डिस्काउंट के साथ टी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलेगी, तब सारे लोग आ जाएंगे कि भाई असा करो डो कहो सी, हमें भी डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो फिर आप बता देंगे सबको देंगे डिस्काउंट।

0: काजल लगा
1: हादा या शे मो भी डिठी हुई हिन प्रोग्राम में मानो जो पेट न थो भरजी वरी बियन में भी वनन उते भी सागो अशर है तो अल्लाह सही हिदायत देने मानन के ई बपा शैतान है

अच्छा ऐसे नारवाणी वालेकुम अस्सलाम सलामत। ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान जी की खेसियां, मैं भी आ गया। वेलकम तो बनता है गुर्दों से नहीं दिल से। जी जी बिल्कुल, आज आपको दिल से वेलकम कहते हैं। खालिद नोटकानी हमारे साथ है, बेहतरीन प्रोग्राम खालिद नोटकानी मातली से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जना आपको वेलकम कहते हैं। अकबर अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ है सकरेन से, आप हमारे शो को ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा है, गुड। थैंक यू प्यारे भाई। भैया आप लोगों ने झंडो मरी बोल बोल के इतना उनको बिजार कर दिया, मुझे लग रहा है कि अब वो प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर रहे। झंडो मरी वाले भाई आ जाएं प्रोग्राम में, बताएं इनको कि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। मुझे घर मारती हो। अच्छा जी खास के लिए हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, हेलो जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी खुश आमदीद। और खालिद बोजदार हमारे साथ हैं, खालिद बोजदार और माजिद बोजदार दोनों को वेलकम कहते हैं। मीर मुमताज अली जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। अदी सिद्रा मुस्कान भेण खुश आई हो, सफ़र तांजी भेण खुश आ, प्रोग्राम चौथा माशाल्लाह बेहतरीन आहे, तव्हांजो जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू मोहब्बत वाणी तव्हांजो, तव्हांखे प्रोग्राम पसंद अची पियो। अच्छा जी खास के लिए कहते हैं कि कंहिंखे गुलाब जा गुल ॾियण मोहबत न आहे हूंदी, उनखे गुलाब जीअं पाक रखण मोहबत हूंदी आहे। वाह वाह वाह वाह जबरदस्त। ऐं उनखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि न गिफ्ट ॾेई छॾियो, इहा बि मोहबत अथव। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आके जो पीनी प्यारे हैं ना आपकी लाइफ में पसंदीदा इंसान, तो उसको आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश, आप देख लीजिए आपका जो वो है ना वो कौन सा प्रोडक्ट लगाता है, दोनों प्रोडक्ट लगाने वाला है या फिर खाली फेस वॉश लगाने वाला है, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स आप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हर स्किन के मुताबिक हर कोई लगा सकता है, मर्द हजरात खवातीन सारे लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। किशोर भाई कहते हैं कि अदा 10 अक्टूबर को मैं लाड़काना आऊंगा, 10 डब्बी लूंगा, वायदो वादो सा अल्लाह एड़ा वायदा करे चढ़ींदा आयो न। चलो सही आ विराए जो वनी पोड़े कराची में जारी तारे भाभी खेड जो अदन खेड जो। अलीशा कहती है कि कौन कहता है आंखों का खौफ नहीं होता, वो घूरता है तो मैं अपना फैसला बदल लेती हूँ, कबा अखिन जोड़ो रोब हूँ अल्लाह जाई तब। अलीशेर कहते हैं कि सिस्टर आज मेरे लिए एक सॉन्ग प्ले करो गुलाम हुसैन उमराणी का, मां बिल्कुल कोशिश कयां थी, बात आंजी फरमाइश हलाए छड़ींदा सी, मोहब्बत हुए तां प्रोग्राम बुधो पया दर दे दिल कदम खुशानी कदम। अली गुलाम केरियो भाई बेरिया रोड खां असां के ज्वाइन कयो आहे, बाजू मोहब्बत हूं भाके चौंदा भली करी आया है, तां सब वेठा हो जो। आबिद भाई कहते हैं कि डील डन, मेरी ऑल मार्केट में डिस्प्ले है, डी स्किन अवेलेबल फुल डिस्काउंट के साथ मिलेगी। भाई क्या बात है, आबिद भाई ने बोल दिया, चले अब जाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम डिस्काउंट के साथ लीजिए, ये तो भाई मजे हो गए। कमाल धमाल। चले यहाँ पर बैठे रहिए, टाइम हुआ है न्यूज ब्रेक का, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिए, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम, लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: तो दर्दारी से हुआ है तो कराची में सियासी यतीमन जी जमायत जी सियासत करे रही है से उन्हें वारी सियासत के सिंध में आने वाली कोशिश के कामयाब थे नींदासी तरजा बार टॉप कन था तो अवां खे वाधायूं देण बदरान नफरत वारी सियासत कर था थर जी तरकी कुछ मानन की हजम नाहे थी रही ऐसा नफरत जी सियासत के दफन करे छींदासी इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ तो थर जो कोयलो बेकार है सीरप कारीगरण बेकार है हाँ पूरा पाकिस्तान हैरान है तो थर किथे पहुंची वो है इस्लामाबाद वारन के चवां तो हू भी थर जड़ी तरक्की ध्यान देन

0: जिमनी फोर्सिस पारां बाबुल मंद जे साहिल इलाइक़े ज़ोहाब जो बीहर कंट्रोल हासिल करण जी दावा मुख़्तलिफ़ ऑपरेशन दौरान 1700 खां वधीक भागीन खे मारण जी बि दावा कई वई। जिमनी हुकूमत फौज जे तर्जुमान मूजिबि हुसैन जे 1122 ताक़तनि ते कार्रवाई कई आहे, जंहिं दौरान 1747 हुसी बाग़ी मारिजी विया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
6: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
5: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
7: सुपर वाइट।
8: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाए 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ां मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
9: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
9: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
9: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
11: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 02-310-31-43-842।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचण, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
6: जी हा, 2315-2576।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीर प्रकाश मटियारी सक्रेट मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर अभी तक आप लोगों ने याद क्या मतलब अभी तक आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करी तो आप जल्दी से कर लीजिए और आप लोगों के कॉमेंट्स मुझे जरा जो है ना वो भुला देते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। चलिए जी, यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कह देते हैं। और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो मुझे जल्दी से बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको रिजल्ट्स कैसे दे चुकी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की क्या क्वालिटीज है ये तो पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताऊंगी जनाब। कैसे आपको छोड़ेंगे इसे सब कुछ बताएंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की कितनी सारी बातें हैं जो कि आप लोगों को मिल सकती हैं ये खूबसूरती जो कि आप इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात तो ये है बिल्कुल कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि ऐसा कोई सी नहीं होने वाला है आप लोगों के साथ कि भाई आपकी अगर स्किन सेंसिटिव हो और आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो स्किन खराब हो जाती है। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो आपके चेहरे की स्किन सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की तरफ जाती है जनाब। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे पर इतना अच्छा सा निखार देती है, ताजगी भरा एहसास आपके चेहरे पर आ जाता है कि आप खुद ही कहते हैं कि वाह जी वाह ये तो कमाल हो गया। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो जल्दी से कराइए जी, क्योंकि आपको जो नंबर बता रही हूँ ना प्रोग्राम के अंदर उनके ऊपर राबता कीजिए और आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल करा सकते हैं। तो नंबर क्या होने वाले बिल्कुल आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन आप ये तो बात सुन लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। और डी स्किन फेस वॉश की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो डी स्किन फेस वॉश बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, क्योंकि कुछ लोग पहले ये शिकायत कर रहे थे कि भाई हमारे एरिया में नहीं मिल रहा या फिर अवेलेबल नहीं हुआ है। तो अब आप जो है ना इजीली अवेलेबल भी करा सकते हैं, आपके एरिया में भी अवेलेबल हो जाएगा और आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना इसको इतने जबरदस्त तरीके से तैयार किया है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है। और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम है ना इसकी एडिशन इसलिए रखी गई है ताकि डी स्किन फेस वॉश जो है ना ये सबसे फेस वॉश से खास हो जाए, क्योंकि जब इसके अंदर ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड हुआ तो समझ लीजिए कि ये भाई खास हो गया, क्योंकि ये जब आपकी स्किन के लिए यूज जब आप करेंगे ना तो इसके फायदे इतने ज्यादा आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश जो है ना जब आप इस्तेमाल करते हैं अपना फेस वॉश करते हैं तो आपके चेहरे पर ये जो गंदगी जमा हो जाती है, डस्ट पॉल्यूशन वगैरह जमा हो जाता है, गर्द गुबार आपके चेहरे पर जमा हो जाता है जो कि भाई अपने चेहरे का आप ख्याल नहीं रख पाते हैं या फिर आपका काम ही कोई ऐसा है कि आपको या तो पूरे दिन में आप फेस वॉश भी नहीं कर पाते हैं या तो फिर ऐसा वाला सीन है कि आप लोगों को इतना भी टाइम नहीं मिलता कि भाई एक मिनट निकालकर आप अपना फेस वॉश ही कर ले। तो आप ऐसा कीजिए, बस आप डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये अफोर्डेबल भी है और पोर्टेबल भी है, वो ऐसे कि भाई आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पर भी ले जा सकते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं वहां ले जा सकते हैं और वहां पर बस आपको जब भी टाइम मिले एक दो मिनट आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। जब आप फेस वॉश करते हैं डी स्किन फेस वॉश से तो आपको ये फायदा मिल सकता है क्योंकि डी स्किन फेस वॉश जो है ना लगाते ही साथ ही आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपके चेहरे की स्किन को क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है, डीपली आपके चेहरे को हाइड्रेट रखता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट मौजूद हो जो कि आपकी स्किन के लिए सिर्फ फायदा ही फायदा हो तो आप डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि भाई कितनी शानदार है, लेकिन हम जहां पर जो डी स्किन फेस वॉश के बारे में बात करते हैं तो फेस वॉश का यूज भी भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई मरतबा तो हम इस चीज को जरा इग्नोर कर देते हैं कि भाई हमारी स्किन को कोई अच्छा फेस वॉश चाहिए, लेकिन जब आप इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को आप जरा इग्नोर कर देते हैं, फेस वॉश का यूज नहीं करते या फिर आप जो भी आपको बताया जाता है रेंडमली कोई भी साबुन इस्तेमाल कर लिया, कोई भी रेंडमली फेस वॉश आपने इस्तेमाल कर लिया तो ये चीजें भी आपकी स्किन को डैमेज कर देती हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन तमाम चीजों से बचे और अपने चेहरे को ताजगी भरा एहसास दें, खूबसूरत रखें, फ्रेश रखें, यंग रखें तो आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो, जब भी आपको टाइम मिले आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। दिन भर आप जो है ना अपने चेहरे को महसूस करेंगे कि भाई ये ताजगी का एहसास तो बरकरार ही बरकरार है। और इसी तरह से जब आप डी स्किन का फेस वॉश यूज करते रहेंगे तो खूबसूरती आपके साथ साथ होगी, आपकी रोजमर्रा की जो
स्किन केयर है ना, जो कि आपको लगता है कि ये बड़ा टफ टाइम है हमारे लिए और बड़ा टफ सा लगता है आप लोगों को स्किन केयर करना, तो बस अपना फेस वॉश कर लीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। जब ये दोनों काम आप करते हैं ना और मुसलसल करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये तो भाई आप लोगों को सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से बड़ी अच्छी रिजल्ट दे रही है। तो अगर आप भी परफेक्ट वाला निखार हासिल करना चाहते हैं, परफेक्ट आप खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं, आपको सारी चीजें परफेक्ट पसंद है, तो खूबसूरती के मामले में क्यों पीछे रहते हैं, परफेक्ट वाले प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए जो कि 2-in-1 फार्मूला है। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज के फौरन बाद ही आपको ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया है। तो अगर आप फेशियल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो बस आप घर बैठिए जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, आपको घर बैठे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद ही कहेंगे कि ये तो कमाल ही हो गया। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं। तो लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए क्योंकि आप सब लोगों के लिए है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। इसी के साथ साथ अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपको नंबर्स बताऊंगी, उनके ऊपर रابطہ कीजिएगा और رابطہ करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 एंड यो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर सां जेके तव्हां डायल करे इजीली पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन फेस वॉश हुजे तव्हां अवेलेबल कराए सघो था। सो बाबा अवेलेबल करायो ऐं खूबसूरती जे मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, कॾहिं बि पंहिंजी स्किन खे जेको आहे न ईअं तव्हां छॾे न ॾींदा कयो, पंहिंजो ख़्यालु रखो ऐं पंहिंजे चेहरे खे ॾिसो त बाबा हुनखे कहिड़े प्रोडक्ट जी नीड आहे। अक्सर ईअं थींदो आहे त असांखे वरी ख़बर बि न पवंदी आहे त असांजी स्किन टोन कहिड़ी तरह जी आहे। अगरि तव्हांजी स्किन सेंसिटिव हूंदी आहे त हुन ते तव्हां वरी ईअं कंदा त छॾे ॾींदा बसि पंहिंजे चेहरे खे, कोई बि प्रोडक्ट यूज़ न कंदा आहियो। पर सेंसिटिव स्किन जे लाइ बि प्रोडक्ट मौजूदु हूंदा आहिनि मार्केट में, बसि इहा हिकिड़ी चीज़ जी तव्हांखे ज़रूरत आहे त तव्हांखे सही प्रोडक्ट परचेज़ करणो आहे, सही प्रोडक्ट जी तव्हांखे नॉलेज हुजे, ख़बर हुजे, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम अखियूं बोटे वठी सघो था, अखियूं बोटे इस्तेमालु करे सघो था। छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे ही मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, तव्हांजी स्किन जे लाइ परफेक्ट प्रोडक्ट आहे जनाब। सो वञो ऐं वठी अचो ऐं तव्हां मर्द हज़रात ख़वातीन सभु कोई लॻाए सघे थो ऐं सभु कोई सुहिणो थी सघे थो। सो बिल्कुलु इस्तेमालु कयो ऐं तव्हां असांखे जॉइन कंदा वञो पिया, बिल्कुलु तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि, पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा रहो ऐं मूंखे ॿुधायो टीचर्स डे आहे त तव्हां जेको अहिड़ो उस्ताद, को अहिड़ो टीचर जे तव्हांखे को जुमिलो चयो हुजे जेको अञा ताईं तव्हांखे यादि रहिजी वियो हुजे, लाइक मोटिवेशन जीअं तरह तव्हांजी ज़िंदगी में उहो जुमिलो कमु ईंदो हुजे, त मूंखे ॿुधायो। 881 ते ऐं फेसबुक ते तव्हांजा मैसेजेस आहिनि, बिल्कुलु पढ़ूं था ऐं तव्हां असांखे जॉइन बि करे सघो था 881 ते ऐं फेसबुक ते बि।

गाना तो हम इंजॉय करेंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपके पैनल पर काफी सारे मैसेजेस जमा हो चुके हैं, तो उनकी जाने भी आ जाते हैं। देखें कौन कौन हमारे साथ है, कहाँ कहाँ से आपने मुझे ज्वाइन किया है और क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं तो मुझे मैसेज मिला है जी मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर भाई का, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा, खुश आयो चाको सफा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे रहे आयो तवां भी तवां जी फैमिली भी वाह सही वाह वाह सही वाह। महबूब अली हमें सुन रहे हैं मोरो सिटी से, कहते हैं सिस्टर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप हमेशा गुलाब के फूलों की तरह मुस्कुराती रहो, आपका प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स गुड है सिस्टर। न्यू सॉन्ग इब्रारुल हक का प्ले करें। ओके जी, नया गाना लगाते हैं, नवा सॉन्ग सुनाते हैं जी आपको, ठीक है। और चाचा खालिद हमारे साथ ही गाना बिल्कुल चाचा आपको सुनाते हैं आपकी पसंद वाला। और हमारी साथी हमारी साइमा मीर, क्या बात है, वालेकुम अस्सलाम। कहती माँ बाप के बाद जो अल्लाह पाक ने मकाम दिया है वो उस्ताद को दिया है। सलाम मेरे तमाम टीचर्स को जिनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा समझा और आज जिस मकाम पर हूँ, ये सब उनकी मेहनत अजमत का नतीजा है। मेरे तमाम उस्ताद मेरे लिए काबिले एहतराम है, हैप्पी टीचर्स डे। ओके जी ओके, क्या बात है। और दूसरा आपने जो मैसेज किया ना, वो मुझे थोड़ा सा आपका मिसिंग पार्ट मैसेज मिला है, लेकिन जितना मिला है वो पढ़ लेते हैं। कहती है साइमा मीर और माय बेस्ट स्वीट टीचर सिद्रा मुस्कान को भी सलाम, बहुत सारा प्यार और सलाम उस्तानी जिया अली को भी। टॉपिक बहुत सी बातें सबसे खास के मुझे के बाद आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है और पता नहीं आप क्या कहना चाह रही थी, वैसे आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ हैं जी यहाँ पर आईएम जाकिर हुसैन मरी, बाकिर अली मरी फ्रॉम कोटड़ी, मोहम्मद कबीर शो नाइस है, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। ये किसी का खाली मैसेज मुझे मिला है, तो जिसका ना पढ़ूं तो समझ जाएगा, ठीक है। वोट मोहम्मद तैयब थेबू का, हाँ भी बोला थेबू, कहते हैं आपका शो वेरी वेरी नाइस है, सलाम आपको जी। वालेकुम अस्सलाम आपको। और हमारी साथी हमारी दिल रुबा दिल रुबा में सुन रही है बेरिया रोड से, कहती है अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सिद्रा जान, क्या हाल है आपके, नाइस शो है, मैं रोज आपका शो सुनती हूँ, दिल से आप याद भी नहीं करती हैं, एक भी ऐसा शो नहीं है आपका जो मैंने मिस किया हो। एंड आबिद भाई को सलाम दीजिएगा, मैं भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम खरीद करूंगी अदा आबिद भाई की शॉप से। मास्टर मंजूर को प्ले करना प्यारी, हाजिर हाजिर दिल रुबा, हाणे तव्हां जो नालो रोज खणंदासीं, ठीक आहे। तव्हां जल्दी वञो आबिद भाई का डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करे अचो, उहा बि डिस्काउंट में, सही आहे, इहो चइजो। ओके जी, हमारे साथ है यहाँ पर साइमा, कहती है और माय बेस्ट स्वीट टीचर, अच्छा ये वही मैसेज है, ये दोबारा से पूरा होकर मुझे मिला है, सही है जी सही है। कहती है टॉपिक सर ने कहा था अपने भाई जैसी जहीन बनो, सबसे खास के मुझ पे मेरा नाम भी टीचर ने रखा था। अल्लाह चलें जी, फिर आपने अमल किया उस बात पे। और कहती हैं कि प्यारी आरजे प्यारा शो सिद्रो, गांव और सिटी से साइलेंट टीचर सुन रही है आपको, लास्ट में कोई प्यारा सा नगमा उन सब के नाम करना। चलें जी डन हो गया, लाजमी कर देंगे। मकसूद मलाह हमें सुन रहे हैं मेहरापुर से, कहते हैं हेलो सिद्रा मुस्कान, मुझे एक गाना तो सुनाना, लोटो मुखे आने दे मुझो मुखे आने दे। अल्लाह यो गानो तो मां कदे हलायो ही ना है प्रोग्राम में। टाइम मिली तो बिल्कुल हलाए बैठूंगा।

अरे भाई सजन डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो लगाए थो गाल के समझंदा कयो सजन हाने डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए करे सोनो थी वया इन करे हाने ताखे वणे थो सो अगर तहां भी चाहो था बाबा ताजा सजन भी सोना थी वने तो तहां उनन के डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो दस जो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम उनन के तहां गिफ्ट भी करे सको था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप परचेस कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रही है जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेस कीजिए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

हांजी मूंखे भी तव्हां ॾाढा वणो था जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था ऐं उहे सभु माण्हू वणनि था जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूस करे रहिया आहिनि ऐं ॿुधायो आहे त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे केतिरो सुठो रिज़ल्ट ॾिनो आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बि ट्राए करे सघो था सो ट्राए कयो बाबा ट्राए करण में छा आहे जॾहिं तव्हां ट्राए कंदा तव्हां ख़बर पवंदी त बाबा सिद्रा एतिरो छो थी ॿुधाए ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जाइए परचेज कीजिए मीर मुमताज़ अली जतोई भाई हमें सुन रहे हैं लाड़काना से आपने मुझे ज्वाइन किया है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अच्छा चाचा कहते हैं कि हाँ कल से कराची में भी गर्मी है सेम सेम लाड़काना तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम कैसे लगाएं पसीना आएगा नी नहीं आएगा लेकिन आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए जी रात के टाइम लगाइए पसीना आपको नहीं आएगा और ने कहा अलावा हाँ किशोर भाई सही कह रहे हैं सर्दियां आए तो अपने हिसाब का फैशन भी करें भाई गर्मियों में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा लेकिन ये है कि भाई दो महीने के लिए सर्दियां आ रही है तो क्या ऐसा ही फैशन करेंगे इतनी ज्यादा गर्मियां आ रही है ना भी क्या बताएं तो आप गर्मियों में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा सकते हैं वैसे डी स्किन का फेस वॉश तो क्या ही बात है जरूर ट्राई कीजिएगा अली गुलाम भाई हमें सुन रहे हैं बेरिया रोड से भाई अली गुलाम भाई आप आबिद भाई से जाकर ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर लीजिएगा ठीक है और फहीम भाई कहते हैं अदा माँ भी मुझे नालो चेंज करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो रखा भले रखो नेकी और पूछ पूछ अलीशा कहती है कि पसंदीदा शख्स जो मुकाबलो दुनिया जी हसीन तरीन शख्स भी नथो करे सके ओ यह गाल कही थी नहीं भली अच्छा उन खां अलावा हमारे साथ यहाँ पर वाजिद सिंधी भाई कहते हैं अदा ये जो तुम सवाल पुछवा ना जो जवाब बिल्कुल मुख्य खबर को तमाम छोकरा ही मुख्य बुधाईंदा मोहम्मद मीरन जकरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आबाद से वेलकम कहते हैं आपको भी अली गुल कटभर भाई हमें सुन रहे हैं हाँ जी जेकब आबाद से आपने मुझे ज्वाइन किया है वफा अली गुल कटभर भाई प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया और हमारे साथ यहाँ पर दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची कहते हैं ऑल हैप्पी टीचर्स डे आप सिर्फ हमें किताबी इल्म नहीं देते बल्कि जिंदगी में सही रास्ता चुनना भी सिखाते हैं आपकी मेहनत रहनुमाई और मोहब्बत हमेशा याद रहेगी थैंक यू फॉर बींग सच अमेजिंग टीचर ओके जी क्या बात है ये तो बढ़िया हो गया आप हमारे साथ मौजूद हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताएं तो मुझे जल्दी से पता तो चले और यहाँ पर हमारे साथ जी हमारे प्यारे मेहर इरफान सियाल साहब भी मौजूद हैं कह रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम आर जी गुड आफ्टरनून टू यू सर अच्छा चले आप यहाँ पर बैठे रहिए प्रोग्राम सुनते रहिए क्योंकि आपका हमारा साथ पूरे पूरे तीन बजे तक का है टाइम हुआ जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का सुमाटू गोपांग वालेकुम अस्सलाम आप हमें कंबर सिटी से सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया और गाने में सबके लगाती हूँ वापस मुझे आने दें जरा कमर्शियल लेते हैं और उसके बाद यूं जाकर यूं वापस आते हैं सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिन ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे के मिले वधीक खूबसूरती हर हर ही रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर चेनी कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
6: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीज़नि खे लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं मरीज़ पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
8: जेकरहे तवां के मेदे जी तकलीफ है, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3638-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
10: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
10: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-252-5786।
10: जी हाँ, 2311-5525-786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
10: सिंध जो आवाज़।

0: हुआ।
1: हाँ भाई, तो आपने क्या सीखा? थारी हाँ था उडामी बने एडो वापरी, ठीक है, आपने ये सीखा। लेकिन यहाँ पर ये एक और बात दी आप लोगों को सिखाने के लिए कि भाई आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि इतनी जो प्यारी प्यारी बातें प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है जो आप लोगों को लगाएंगे तो रिजल्ट ऐसे देगी जैसे आपने कोई मेगा सा फेशियल कराया हो। दूसरी बात ये कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है जो भाई आप लोगों के स्किन से रिलेटेड आप लोगों के लिए फार्मूले बनाते हैं। और तीसरी बात यह है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये इतनी जबरदस्ती सारी सी चीजें ऐड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के रिजल्ट्स को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देती हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो रिजल्ट्स आपको मिलेगा ना वो ऑल स्किन टाइप के लिए, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी हो, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, तो हर स्किन के ऊपर आप इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हंस जाते हैं चाहे आप खवाते हैं। क्योंकि कई मरतबा कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि बाजी क्रीमू तो औरतू लगाएंगा, क्रीमू तो माइन जो कमाए लगाए, बाबा हाणे जमानो इलाही चेंज थी वो है, हाणे तमाम वेंदा ॾिसंदा त सेलोन्स में मर्द जेके न वॾो ईअं रज के फेशियल कराईंदा हूंदा आहिनि, ऐं उहे जेके फेशियल्स कराईंदा आहिनि उहे बाबा बस उन्हनि खे तव्हां छॾे ॾियो, हाणे मां छा उन्हनि जे लाइ चवां, बसि तव्हां घर वेठे पंहिंजे लाइ कोई अहिड़ो सुटेबल ऐं सही सफ़ा क्लीन प्रोडक्ट पंहिंजे लाइ परचेस कयो जंहिंजो नालो आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे फेशियल वारो रिज़ल्ट ॾिए थी। सो अगरि तव्हांखे फेशियल वारो रिज़ल्ट मिली रहियो आहे मुनासिब पैसनि में बिना कंहिं टाइम जे ज़ाया करण जे, त तव्हांखे कहिड़ो बाबा हर्ज आहे, तव्हां छो नथा वठो? ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ाइदो तव्हांखे इहो मिलंदो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे चेहरे ते चार चंड आणे छॾींदी, तव्हां मर्द हज़रा तव्हां

0: साड़ी
1: क्या मतलब वो बहुत ज्यादा पतला था ऐसा कह सकते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो समझने के लिए हमें जमाने चाहिए होते हैं। उनके अलावा अगर तहां से अगर मौजूद है तो पोस्ट के बाबा लाइक एंड शेयर करना। हेलो आई मुख्य बुधायो कमेंट करी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल किया है। दर्द दिल कहती है कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं सीखा। अलीजा भी आपका शो सुन रही है, दोनों परियों को वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ हमारे सर महर इरफान सियाल साहब भी कहते हैं ग्रेट हो ग्रेट शो मैम आरजे, वी आर लिसनिंग शो फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इज द बेस्ट, यस कोई शक नहीं इस बात में, डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा कमाल आहे, असा पान लगायूं था असने घर में यूज कई वेंदी आहे, एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी बाबा हर तरफ चर्चा आहे, हर कोई दीवानो मिले पियो असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो, असां कंहिंखां पुछंदा न बाबा ॾियो अलवाल कहिड़ी क्रीम लॻाई था चवंदा बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाई आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको एतिरो ख़ूबसूरत माण्हुनि खे रिज़ल्ट ॾे पई त माण्हुनि जी दिलि चवंदी आहे न वैसे ई त असां बाबा सुठो प्रोडक्ट लॻायूं, ऐं कोई प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट हुजे ऐं जेको असांखे मुनासिब पैसनि में मिलंदो हुजे, त ही सभु क्वालिटीज़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि मौजूद अथव। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बि वठी सघो था, तव्हां बि लॻाए सघो था, तव्हां बि इस्तेमाल करे सघो था। भैया अञा ताईं ख़बर न पई आहे त पहिरीं आया पखी आहे चाचा हा ऐसा हो सकता है। किशोर भाई कहते हैं कि कुछ माण्हू बि अहिड़ा हुजनि त जा अच्छा हा हा सही सही

हाँ जी प्यारी दिलरुबा, हमारा प्रोग्राम जो है ना वो डेली सुनती है। ये बात बस अब मेरे जहन में बैठ गई, हम दिलरुबा को याद रखेंगे, हमारे दिल में अब दिलरुबा रहेगी क्योंकि दिलरुबा जो है वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने जा रही है। तो जल्दी जाइए और परचेज कीजिए, यहाँ पर आप सब लोग भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं। और हमने यहाँ पर गाना लगाया है जी, ये बड़ा प्यारा गाना होने वाला है प्रोग्राम के अंदर, सो आइए सुनते हैं।

ओके जी, यहाँ पर मैंने ये कमेंट देख लिया है। चाचा कहते हैं कि फेशियल की तरह लगाएं क्या डी स्किन ब्यूटी क्रीम? न बाबा या गाल तां के मैं रोज बुधाई दिया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जब आप इस्तेमाल करें तो ये एक नाइट क्रीम है, ठीक है। ऐसे ही आप किस तरह से लगाएंगे, आप अपना फेस वॉश करेंगे सबसे पहले डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद अच्छे से चेहरे को सुखा लेने के बाद आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर उंगलियों की मदद से आराम से लगाना है, प्यार से लगाना है, सॉफ्टली लगा लीजिए और इस तरह लगाएं कि क्रीम आपके चेहरे पर थोड़ी सी नजर आनी चाहिए। मसाज हरगिज नहीं करना, जब आप मसाज करते हैं किसी भी नाइट क्रीम का तो फिर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, सीन थोड़ा बिगड़ जाता है, तो मसाज नहीं करना। अगर मैं फेशियल की बात करूं कि इसके अंदर फेशियल के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो आपने फेशियल की तरह हरगिज यूज नहीं करना। ये एक नाइट क्रीम है तो इसे नाइट क्रीम की तरह ही यूज कीजिएगा, ठीक है। अच्छा साजिद हुसैन सुमरो में सुन रहे हैं, शो बहुत अच्छा है आपका, थैंक यू। आप हमें सुन रहे हैं डीआईजी ऑफिस लाड़काना से, शाहिद बबर का गाना सुनाए। आई ट्राई, मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ आपका गाना लग गया तो लगा देंगे। और यासीन खंड में सुन रहे हैं जी, कहते वेरी नाइस शो रोजाना की तरह, बहुत शुक्रिया। सलीमुल्ला फुलपोटो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यासीन खंड कहते हैं कि आपकी डी स्किन ब्यूटी क्रीम रोजाना लगाते हैं जी, रोजाना ही लगाइए, रोजाना लगाने के लिए ही है। बताएं आपको रिजल्ट्स कैसे मिले हैं। अच्छा सलीमुल्लाह फुलपोटो कहते हैं आपका आपके शो सुन रहे हैं।

खैरपुर मीरा से। ओके जी, ओके, थैंक यू, आपको वेलकम कहते हैं। नूर मोहम्मद भुट्टो हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। गुल यासीन नाज हमारे साथ मौजूद है, आप हमारा प्रोग्राम सब दोस्तों के साथ मिलकर इंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको भी वेलकम हो गया। और हमारे साथ हैं जी अली रजा लगारी भाई, थैंक यू सो मच। और ये जी आबिद बिरोही नौशेरो फिरोज से आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके, कहते हैं कि आज लूंगा डी स्किन ब्यूरो क्रीम। बिल्कुल जी, आज लीजिएगा डी स्किन ब्यूरो क्रीम, परचेज कीजिए, आपको पता चले कि डी स्किन ब्यूरो क्रीम कितनी कमाल की प्रोडक्ट है।

अच्छा जी, क्या बात है, कितना खूबसूरत गाना हम सुन रहे हैं। और सुमाटो गोपांग लिखते हैं कि रीड कीजिएगा सारा कमेंट आपने जो लिखा है। टॉपिक आंसर कहते हैं कि मेरे लिए मेरे सबसे यादगार टीचर मेरे अबू एजाज हुसैन गोपांग थे। उन्होंने बचपन से मुझे कॉन्फिडेंस दिया और लोगों के सामने बात करना सिखाया। आज मैं जिस कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ उसके पीछे मेरे अबू की तरबियत है। मेरे लिए वो सिर्फ अबू नहीं, मेरे पहले टीचर थे। माई फादर वॉज ऑल्सो गवर्नमेंट टीचर। ओके, क्या बात है, जबरदस्त हो गया ये तो। और उनका अलावा हमारे साथ हैं जी दर्दे दिल, कहती हैं कि टॉपिक चंदा टीचर ना टीचर ने ना ये बात बोली थी, अभी तक मुझे याद है। लिखा है कि उस्ताद की इज्जत करो क्योंकि वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता बल्कि जिंदगी जीने का हुनर भी सिखाता है। ओके, जबरदस्त हो गया। हुबदार अली भाइयों में सुन रही प्रोग्राम तवांजो भल्लो आए। हुबदार अली शाहपुर चाकड़ का तवां असा के ज्वाइन कयो आए। तवांजो मोहब्बत हुआ भा, तवां के भी तवांजे एरिया जे आसपास करीबी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी, डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली वेंदो। सो वञो त लाज़मी परचेज करे अचजो। फहीम भाई, अल्लाह करिए आपकी जर्नी जो है वो सेफ सेफ रहे, आप सेफली पहुंच जाए जहां आप जा रहे हैं। अब्बासी भाई कहते हैं कि मेहरबानी करके आप भाई इतने सालों से बर्दाश्त ही तो करते आ रहे हैं ना, अब ऐसा है कि बर्दाश्त नहीं होता तो इसलिए हम ब्लॉक कर देते के तो आखिर एकड़ो इंसान बर्दाश्त करे सके तो मुख्य बुधायो। और वो भी बिलावज अगर ब्लॉक ना करें तो फिर उनकी जबानें देखिए कैसी होती हैं, उनके जबानों से पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज निकल रहे होते हैं, तो ये सही ऑप्शन है। और वहीद वफाई भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल, आप भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है। जेकब अब्बास से आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू के साथ आपको वेलकम कहते हैं जी। बिल्कुल, झंडो मरी वारा अलाए कारी वयान लगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वया तो वरी मोठियाई गुरु बाबा मोटी जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो साण। रमजान भाई भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया रमजान भाई, आपको भी वेलकम कहते हैं। अई भाई किशोर माठ करण जो टाइम गुजरी वो बाबा, हाँ कमेंट पढ़ासी जी मानो जा रेजी न वन वरी चवंदा न कमेंट डिस पढ़ी को। और हमारे साथ ही जी सर महर इरफान सियाल साहब कहते हैं टीचर्स डे सल्यूट टू माय प्राइमरी क्लास टीचर मैम रोजी जोसेफ फ्रॉम सेंट मेरी स्कूल बहावलपुर। क्या बात है, आपको रोजी मैम जो है वो याद है। और ऐसा होता है हमारी लाइफ में, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में हमेशा याद रह जाते हैं, और उनकी बातें उनके पढ़ाने का अंदाज वो सब इतना हमें स्पेशल और खास लगता है कि हम कह रहे हैं भाई क्या ही बात है। और कहीं ना कहीं मैं जब एक मेरी टीचर है, मतलब थी तो नहीं है, अल्लाह सीना की वॾी हयाती ॾे, सो मां जॾहिं उन्हनि खे ॾिसंदी हुयमि, जॾहिं उन्हनि पढ़ाइण जेको वे हूंदो हुयो उनखे ॾिसी मां चवंदी आहियां मां वॾी थी करे टीचर थींदी बड़ी हुई तो फिर मेरा टीचर वाला जो ख्वाब था वो मतलब गुम हो गया कहीं, फिर मैं दूसरी चीजों में लग गई। फिर ऐसा है कि मैं टीचर नहीं बन पाई, लेकिन ये बात है अगर मैं टीचर बनती तो बहुत अच्छी टीचर बनती।

0: हमारे साथ हैं, ये हमारी फजली की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी टीचर्स डे आफ्टरनून। माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सदरा मुस्कान, कैसी हो डियर? सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स को। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं हमारी प्यारी फजीला। और हमारे साथ हैं जी हमारी साइमा मीर, कहती है माशाल्लाह जी अमल बिना इलम केड़ो कोई भी अदा खां घट प्यारी, ये शनीला अली अमेजिंग गाना था। हाँ बिल्कुल, मैंने आज कोशिश करी कि नए नए सिंगर्स को भी मौका दिया जाए प्रोग्राम के अंदर, नए तो नहीं मतलब ऐसे ऐसे गाने लगाएं जो हम तकरीबन कम लगाते हैं। और कहती हैं कि फुल सर्दी में प्ले किया था और आज थोड़ी थोड़ी गर्मी है यानी पुराने सर्दन में गानो हलाए से वरी अजो हलाया दिसो कुछ गाना अड़ा है जेकी वाकई मां इलाही टाइम खां पो हलाइंदी आया। सो बिल्कुल कोशिश करना थी तो तमा के सबनी सिंगर्स जो गाना बुधाईंदा रहूं। और कहती है कि ओ माय टीचर तुम अपना भी बताओ टॉपिक पर कुछ से यादें नसीहत, पहला क्लास कहां पढ़ा था? भाई मेरी जो मतलब पहली टीचर है मैम सुग्रा, उनका नाम है मतलब वो अभी तक है और वो ऐसा समझे कि हमारी फैमिली रिलेटिव्स हैं, तो अभी तक उनसे मेरी मुलाकात होती है। उनसे जब भी मेरी अम्मी पूछती है कि ये कैसी स्टूडेंट थी, मतलब वो बचपन में तो मुझे नहीं था पता कि मैं कैसी थी शुरू में, तो जब भी उनसे पूछती है तो वो मेरी बहुत ज्यादा तारीफें करती है कि भाई इस जैसा स्टूडेंट मतलब नजीब वालों को मिलता है, मैं बड़ी इंटेलिजेंट थी और मुझे ऐसे मतलब जो है ना सारे स्टूडेंट्स में तकरीबन जो है ना वो तारीफ करते हैं मेरी, तो ऐसा है कि मैं अच्छा बच्चा था कटे सटे गाल के अगते वधायूं था। इन खां अलावा जेको आहे पेरी पेरी टीचर मुझी हुआ है, अल्लाह से इनके हयाती दे, इलाही सुठी आ, इलाही सुठी। उन खां अलावा दिलरुबा कहती हैं हां जी आप का बहुत शुक्रिया, लव यू टू। ऐसे खुश रहें और आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना वो लाजमी परचेज कीजिएगा आबिद भाई से जाकर, और आबिद भाई आपको डिस्काउंट के साथ दे देंगे। और इन खां अलावा इमरान भाई कहते हैं बाजी ठीक है? जी जी भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं। और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं ये भी बताएं।
1: शहर से गुजरता
0: तो जी लोटे में अना खीर होयो बाकी पर हार जी पयोस। यासीन खान कहते हैं कि आप
1: तेरी यादों की
0: जी कोशिश होती है कि प्लेलिस्ट जो है ना वो अच्छी बना दे। और हुबदार अली भाई प्रोग्राम में जी तमा तारीफ कई आए, सो थैंक यू सो मच। हाँ भाई चाचू जी को ना प्रोग्राम के इंगेज करे रखन हुआ है, चाचे के खबर आ तो बाबा प्रोग्राम में केड़ा कमेंट करना सी तो उहे लाजमी पढ़ा वेंदा, सफा उहे इग्नोर न थींदा तो चाचू बिल्कुल सब डिटेल से गालियों पुछंदो आए सबनी जी बारे में, तो बाबा ये चीज छा है आई ना जो केड़ो फायदो पवंदो हिया लगायूं क्रीम या हु लगायूं छा कयो, चाचे के हाने सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में खबर पई जी ये ना चाचा, बस हाने लगाने जी देरियाला लगाया था लाइन यू कोन अना ताई चाचे बुधायो है, तो मुखे बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई तो कोन चाचा।

चलें ये लास्ट में हमने प्यारा सा गजल लगा लिया है गुलबहार खास के लिए, भाई मेरे साथ मौजूद है, वेलकम कहते हैं आपको भी। अच्छा चलें प्रिय के वरी ताड़ी सा उडारे वठंदासी खेर जड़ी गाल आए पाजा पाण में तायो और इन का अलावा हिते जेको आ सो अच्छा मुझे एक ना ये चीज हमेशा मतलब ऐसा लगता है कि मुझे कि याद रखा करे, इंसान जो होता है ना वो डिग्रियों से मुझे लगता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं बनता, उसका अखलाक, उसकी तरबियत, उसकी अच्छी जबान जो होती है ना वो उसको पढ़ा लिखा बनाती है। तो अगर आप ये देखिए कि भाई अगले इंसान ने कितनी ज्यादा डिग्रियां हासिल कर ली है वो मैटर नहीं रखती मेरे आगे, बस मुझे ये लगता है कि एक इंसान का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक इंसान के अंदर अखलाक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास अच्छा अखलाक है, अच्छा बोलने का तरीका है, आप लोगों के साथ बैठते हैं तो लोग आपसे जो है वो खौफ नहीं खाते, आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको ये नहीं होता कि हम फलां बात बोलेंगे तो अगले इंसान को बुरा लग जाएगा, बस वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करें, अच्छा महसूस करें तो आप अच्छे इंसान हैं। और डिग्रियां हासिल करना बुरी बात नहीं होती, हासिल करें लेकिन उसके साथ साथ अखलाक और तरबियत का भी ख्याल रखेंगे वो भी लाजमी होता है।

ओके के साथ आप लोगों से इजाजत भी लेने का वक्त आ चुका है। वरी तुम मुलाकात जी का मुझे थे पई आप 5 बजे वाले प्रोग्राम में थियण वाली है। तो पांजो इलाही सारो ख्याल रखना। वेंदी वेंदी बिल्कुल तांगे चई विनासी तबाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारी खूबसूरती में इजाफो आने छे थी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है तुम्हारी खूबसूरती के मुताबिक ही तैयार थी वही है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाओ है सोना सोना थींदा रहो। मिलूं था बाबा 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो पांजो ओ हीरो सारो ख्याल रखना। मोकलानी ना ही सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड

0: आर्ग्यूमेंट मुल्क में जबरदस्ती चलाया जा रहा है कि सिस्टम कलैप्स हो चुका है तो आप सुबह कल। वैसे तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मान लो तो इस्लामाबाद पे थरपारकर वालों को हवाला कर दें, हम उसको ठीक कर देंगे, वहां के बच्चे को टॉप हर एग्जाम में टॉप करवा देंगे, उनका हॉस्पिटल्स का हाल हमने अभी अभी देखा, उनको हॉस्पिटल्स को भी हम 100% मुफ्त करवा के आर्मी दुनिया का स्टैंडर्ड्स भी लेकर आएंगे। हमें सिर्फ इस्लामाबाद का जिम्मेदारी दे दें, वहां हम आपको दिखा देंगे कि थर थर के नौजवान, थर के सियासतदान क्या क्या कर सकते हैं। हमेशा की तरह अब ये रिवायत बन चुका है कि हमारे घर के बच्चे टॉप करते हैं, जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के बजाय उनके लिए तालियां बजाने के बजाय अपने नफरत की सियासत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनकी नफरत की सियासत दफन करेंगे और थर तरक्की करता रहेगा।
1: सिस्टम की नाकामी से नवन सूबन वाले मुल्क के समझ का बाहर आए, इस्लामाबाद नाकाम थो है तो इस्लामाबाद के थर वारन हवाले कर थर की तरक्की से पूरा मुल्क हैरान है। इस्लाम कोर्ट में थरकोल फेज 3 मनसूबे जो इफ्तिताह कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो कराची में सियासी यतीमन की जमायत सहयोनीन की सियासत कर रही है, सहयोनीन वाली सियासत के सिंध में आनण वाली कोशिश के कामयाब थे डींदी। थर जहा बार टॉप कन था इन वाधायू डेण बदरा नफरत वाली सियासत कर थर की तरक्की कुछ मानून के हजम ना थी रही, असा नफरत की सियासत के दफन कर छींदी। इस्लामाबाद जहा माहिर चवंदा हुआ तो थर जो कोयलो बेकार है, सीड़पकारी करण बेकार है, हाने पूरो पाकिस्तान हैरान है तो थर किथे पहुंची वो है। इस्लामाबाद वारन के चवा तो हू भी थर जड़ी तरक्की ते ध्यान देन। यमनी फोर्सेज पारा बाबल मदब के साहली इलाके जोहाब जो बीहर कंट्रोल हासिल करण की दावा, मुख्तलिफ ऑपरेशन दौरान 1700 का वधीक बाघिन के मारण की भी दावा कई है। जिमनी हुकूमत फौज के तर्जुमान मूजिब हुसैन की 1122 थाकन ते कार्रवाई कई है, जै दौरान 1747 हुसी बाघी मार वया। मके मुआदे के स्ट्रेटजिक सियासी एंड दिफाई कमेटी जो इजलास अज रियाज में थो, नायब वजीर आजम इस्ताकदार ख्वाजा आसिम ए फील्ड मार्शल सैयद आसिम उदी सऊदी अरब पौतल। इजलास में तुर्किया ए सऊदी अरब जहा परे वजीर दिफा वारा वजीर ए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शिरकत कंदा। मके दिफाई मुआदे ते अगभराई जो जायजो वरतो वेंदो, पर रही तर्जुमान मूजिब पाकिस्तान इलाकई अमुन इस्तकाम लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म ते कायम आहे। थर पाकिस्तान जो मुस्तकबिल तब्दील करे सके तो थर जो कोयलो पाकिस्तान की तवानाई ए सनअती जरूरत लाए अहम जरियो बणजी रो है। इस्लाम कोर्ट में तकरीब के खिताब कंदे वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह चयो है त आईपीएस दरामदे कोयले बदरां थर जे मकामी कोयले डां मुंतकिल थी रहो आहिनि। सिंध हुकूमत फेज 3 मनसूबो 100% पंहिंजे फर्ज ते मुकमल करे रही आहे। थर फेज 3 सां सालियानो अटकल 220 मिलियन डॉलर वाधू नाणे जी बचत थींदी। केपीके दहशतगर्दी जी बाहि में सड़े पियो, सोहेल आफरीदी रुगो एहतजाज ऐं धरणनि में मसरूफ़ आहे। वफ़ाकी वज़ीर अमीर मकाम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त केपीके में रियासती रट ख़त्म थी वई आहे ऐं हुकूमत नाले का शहर आहे, सूबो रहंदो त सियासत बि रहंदी, सूबाई हुकूमत खे अवाम जी का बि परवाह नाहे।
2: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम, अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी, एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट। अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
6: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
8: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे,
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
6: जी हा, 03-310-31-25-786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे मैं खुश्क और बेरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमे आहिन चार रंग की खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐं चांवरन जी खूबियों जिल्द मां फाइन लाइंस ऐं झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम वीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गडोगड सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सां चेहरे के मिले वधीक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: मातली आसपास की अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10:00-10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 03-347-2

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-252-5786।
6: जी हा, 2315-2575-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: हमेशा की तरह अब की रिवायत बन चुका है कि हमारे घर के बच्चे टॉप करते हैं। जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के बजाय उनके लिए तालियां बजाने के बजाय अपने नफरत की सियासत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनकी नफरत की सियासत दफन करेंगे और थर तरक्की करता रहेगा।
5: सिस्टम जी नाकामी थे नवन सूबन वारे मुल्क के समझ का बाहर आए इस्लामाबाद नाकाम थो है तो इस्लामाबाद के थर वारन हवाले कर थर की तरक्की से समूरो मुल्क हैरान है। इस्लाम कोर्ट में थर कोल फेज थ्री मनसूबे जो इफ्तिताह कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो कराची में सियासी यतीमन की जमायत सहयोनीन की सियासत कर रही है। सहयोनीन वारी सियासत के सिंध में आनण वारी कोशिश के कामयाब थे डींदी थर जा बार टॉप कन था तवा के इन वाधायू डेण बदरा नफरत वारी सियासत कयो था। थर की तरक्की कुछ मानून के हजम ना थी रही असा नफरत की सियासत के दफन कर छींदी। इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ तो थर जो कोयलो बेकार है सीड़पकारी करण बेकार है हाने पूरो पाकिस्तान हैरान है तो थर किथे पहुंची वो है। इस्लामाबाद वारन के चवा तो हू भी थर जड़ी तरक्की ते ध्यान देन। यमनी फोर्सेज पारां बाबल मंदब के साहली इलाके जोहाब जो बीहर कंट्रोल हासिल करण की दावा मुख्तलिफ ऑपरेशन दौरान 1700 का वधीक बाघिन के मारण की भी दावा कई है। यमनी हुकूमत फौज के तर्जुमान मूजिब हुसैन की 1122 थाकन ते कार्रवाई कई है जैं दौरान 1747 हुसी बाघी मारजी वया हन। मके मुआदे के स्ट्रेटजिक सियासी एंड दिफाई कमेटी जो इजलास अज रियाज में थी नायब वजीर आजम इसहाक डार ख्वाजा आसिफ ए फील्ड मार्शल सैयद आसिम उदी सऊदी अरब पहुतल। इजलास में तुर्किया ए सऊदी अरब जा परदेही वजीर दिफा वारा वजीर ए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शिरकत कंदा। मके दिफाई मुआदे ते अगभराई जो जायजो वरतो वेंदो। परदेही तर्जुमान मौजूद पाकिस्तान इलाकाई अमुन इस्तेकाम लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म ते कायम आहे। थर पाकिस्तान जो मुस्तकबिल तब्दील कर सके तो थर जो कोयलो पाकिस्तान की तवानाई ए सनती जरूरत लाए अहम जरियो बणजी रो है। इस्लाम कोर्ट में तकरीब के किताब कंदे वे वजीर सैयद मुराद अली शाह आईपीएस दरामदी कोयले बदरा थर के मकामी कोयले डां मुंतकिल थी रो सिंध हुकूमत फेज थ्री मनसूबो 100 सैकड़ो पैंजे खर्च ते मुकम्मिल कर रही है। थर फेज थ्री सा सालियानो अटकल 220 मिलियन डॉलर वाधू नाणे की बचत थी। केपीके दहशतगर्दी की बाहि में सड़े पयो सोहेल आफरीदी रुगो एहतजाज ए धरणन में मसरूफ है। वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो है त केपीके में रियासती रट खत्म थी वई है ए हुकूमत नाले का शय नाहे। सूबो रांदो त सियासत भी रांदी सूबाई हुकूमत के अवाम की का बेपरवाह नाहे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मोहसिन नकवी की सोहेल आफरीदी से गालू नाकाम बनाने वाले इल्जाम के रद्द कर छो। सलमान अकरम राजा है तो गाल नाकामी जो जिम्मेवार सोहेल आफरीदी ना गाल दौरान केपीके के 5 जिलों में इमरजेंसी लगाने जो वो इमरजेंसी लगाने की इजाजत ना दई सकूं। इस्लामाबाद की अदालत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से हमले केस में पीटीआई बानी के अदालत में पेश करण जो हुकुम दिनो। दहशतगर्दी टोड़ अदालत ईंदड़ बुधड़ी ते बानी के जिस्मानी तौर या वीडियो लिंक जरिए पेश करण जो हुकुम दिनो। अदालत फारूख हबीब हम्माद अजहर मुराद सईद ए शिबली फराज के इश्तियारी करार दिनो। मिल्कियतन जा तफसील तलब अगोड़े डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिफ कयूम ए हसन नियाजी जा जमानत न थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी कर छॾियो।

पेट्रोल ते रिलीफ पैकेज हुकूमत जो एहसान न है। हुकूमत के पेट्रोल लेवी वापस वठणी पवंदी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी के अमीर हाफिज नईम पेट्रोलियम लेवी वारे मामले ते 7 अक्टूबर ते ईंदड़ मरहले जो ऐलान कयो वेंदो। हुकूमत के पेट्रोलियम लेवी खत्म करणी पवंदी। सरकारी कर्जन में 10 सालन दौरान 340 सैकड़ो जे तारीखी वाद जो इंकशाफ थियो आहे। 10 सालन दौरान सरकारी कर्जन में 67,000 अरब रुपयन जी वाद थी आहे। सरकारी कर्जन जो काथो 86,700 अरब ताईं पहुतो आहे। नाणे वारे वज़ारत जी रिपोर्ट मूजिब हर साल मुसलसल कर्जन में वाद थी रही आहे। केपीके में सिक्योरिटी फोर्सेज के खारिजन खिलाफ कार्रवाई, टे दहशतगर्द मारजी वाया। सिक्योरिटी जरियन मूजिब डेरा इस्माइल खान में गुजी इतला ते कार्रवाई करे टे दहशतगर्दन के जहनुम भेड़ो कयो वयो। कार्रवाई दहशतगर्द नेटवर्क के कमजोर करण लगियूं आहिन। मीर रज़ा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारा वाके वारे हंध जो दौरो। जस्टिस उमर सियाल वाके वारे हंध ते कायम गेस्ट हाउस जो जायजो वरतो। अदालती कमीशन के दौरे दौरान जांच ऑफिसर वकील जिब्रान नासिर ए मीर रज़ा जा वारिस मौजूद हुआ। कमीशन जांच ऑफिसर का तफसील में मालूम कया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
6: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
5: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
7: सुपर वाइट।
8: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 02-310-31-43-842।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
7: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे,
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
7: जी हा, 03135525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अरे न खुश बेरोनो की स्किन हर इन जला छा डैमेज डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जै में आहिन 4 रंग जो खूबियो कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे चावरन जो खूबियो जिल्द मा फाइन लाइंस झुरन के घट कन रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले खूबसूरती हर ही रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी तुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतन मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
8: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखिला ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे 4 बजे फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाऊं मुफ्त में डिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
4: मातली आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी मातली शहर जी पहिरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
9: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
6: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125257866।
5: जी हा, 2315525786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: ॿुड़ी 347 ॿटी 41 230।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 0310-3143-842।
6: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सहूनियुनि जी सियासत करे रही आहे। सहूनियुनि वारी सियासत खे सिंध में आणण वारी कोशिश खे कामयाब थियण न ॾींदासीं। थर जा ॿार टॉप कनि था त अव्हां खेनि वाधायूं ॾियण बदिरां नफ़रत वारी सियासत कयो था। थर जी तरक़ी कुझु माण्हुनि खे हज़म नाहे थी रही, असां नफ़रत जी सियासत खे दफ़न करे छॾींदासीं। इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ त थर जो कोयलो बेकार आहे, सीड़पकारी करण बेकार आहे। हाणे पूरो पाकिस्तान हैरान आहे त थर किथे पहुची वियो। इस्लामाबाद वारनि खे चवां थो त हू बि थर जहिड़ी तरक़ी ते ध्यानु ॾियनि। यमनी फोर्सिस आबी गुज़रगाह बाबुल मदब जो ॿीहर कंट्रोल हासिल करे वरितो। साहिली इलाइक़े ज़ोबाब जो कंट्रोल संभालण बाद यमनी फोर्सिस जी वॾी कामयाबी। यमनी हुकूमत जे तर्जुमान मूजिबि हुसैन जे 1100 फ़ौजी थाकनि ते कार्रवाई कई आहे, जंहिं दौरान 1747 हूसी बाग़ी मारिजी विया आहिनि। मका मुआदे जी स्ट्रेटजिक सियासी ऐं दिफ़ाई कमेटीअ जो इजलास अॼु रियाज़ में थींदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, ख़्वाजा आसिफ ऐं फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर सऊदी अरब पहुतल। इजलास में तुर्किया ऐं सऊदी अरब जा परडेही वज़ीर, दिफ़ा वारा वज़ीर ऐं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शिरकत कंदा। मका दिफ़ाई मुआदे ते अगभराई जो जाइज़ो वरितो वेंदो। परडेही तर्जुमान मूजिबि पाकिस्तान इलाक़ाई अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म ते क़ाइम आहे। थर पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल तब्दील करे सघे थो। थर जो कोयलो पाकिस्तान जी तवानाई ऐं सनअती ज़रूरत लाइ अहम ज़रियो बणिजी रहियो आहे। इस्लाम कोट में तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर चयो त IPP दरामदी कोयले बदिरां थर जे मक़ामी कोयले ॾांहुं मुंतक़िल थी रहियूं आहिनि। सिंध हुकूमत फेज़ 3 मनसूबो 100% पंहिंजे ख़र्च ते मुकमल करे रही आहे। थर फेज़ 3 सां सालियानो अटिकल $220 मिलियन वाधू नाणे जी बचति थींदी। KP दहशतगर्दीअ जी बाह में सड़े पियो। सोहेल आफरीदी रुगो एहतजाज ऐं धरणनि में मसरूफ़ आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त KP में रियासती रिट ख़तम थी वई ऐं हुकूमत नाले का शइ नाहे बची। सूबो रहंदो त सियासत बि रहंदी। सूबाई हुकूमत खे अवाम जी का बि परवाह नाहे। PTI जी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मोहसिन नकवी जी सोहेल आफरीदीअ ते ॻाल्हियूं नाकाम बणाइण वारे इल्ज़ाम खे रद्द करे छॾियो। सलमान अकरम राजा चयो त ॻाल्हियुनि जी नाकामी जो ज़िमेवार सोहेल आफरीदी नाहे। ॻाल्हियुनि दौरान KP जे 5 ज़िलनि में इमरजेंसी लॻाइण जो चयो वियो। इमरजेंसी लॻाइण जी इजाज़त नथा ॾेई सघूं। इस्लामाबाद जी अदालत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स ते हमले केस में PTI बानीअ खे अदालत में पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। दहशतगर्दी ट्रोल अदालत ईंदड़ ॿुधणीअ ते बानी खे जिस्मानी तौर या वीडियो लिंक ज़रिए पेश करण जो हुकुम ॾिनो। अदालत फरूख हबीब, हमाद अज़हर, मुराद सईद ऐं शिबली फराज खे बि इश्तिहारी करार ॾिनो। मिल्कियतुनि जा तफ़सील तलब। अॻूणे डेप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम ऐं हसन न्याज़ीअ जा ज़मानत न थियण जोगा गिरफ़्तारी वारंट जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
6: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
5: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
7: सुपर वाइट। خوشخبری خوشخبری اکھن جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھن جے سبنی مریضن لائے ٹے ڈی واری مفت اکھن جی سرجیکل کیمپ پروگرام داخلہ آپریشن 13-14 اکتوبر بروز انگارے اربا جے ڈی فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے جے میں اکھن جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر انہن جی ٹیم اکھن جا مفت پھیکو آپریشن کندا لینسز لگائیندا اواں بھی مفت اکھن جی کیمپ میں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی نوٹ سبنی مریضن کے لینسز کھادو چشمہ دواؤں مفت میں ڈنوں ویندیوں مریض پان سا گڈ موسم مطابق بستر تھاؤں کھڑی اچن طرفا محمد عمر امین باوانی چیئرمین باوانی گروپ
8: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9-6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
9: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842 अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
10: रोज़ानो सुबुह जो 10-10:30 ताईं मरीज़न जो इलाज कंदी
8: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
11: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370 3495244।

सिंधड़ी जी शाम अवां जे नाम अवां जी खिदमत में यूनिस बकारी जो सलाम।

सॼे सिंध में हिकु ई वक़्तु ॿुधो वेंदड़ अवां जो पंहिंजो रेडियो नेटवर्क ऐं उन रेडियो नेटवर्क जे तमामु स्टूडियोज़ जे टावर्स जे भर मां आवाज़ पखीड़े जी परवाज़। मज़ सामेन अॼु अवां सां दिलि सां ॻाल्हियूं कंदासीं, दिलि वारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं। अवां उन्हनि ॻाल्हियुनि जो हिसो थियण चाहियो था त मोबाइल हथ में खणो, पहिरीं पहिरीं मैसेज टाइप करियो, लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो। जी हा, लिखणो आहे MTI, उन खां पोइ स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888 यानी 888 ते मैसेज सेंड करियो, छो त प्रोग्राम आहे जारी ओ सारी। नंढड़े ब्रेक खां पोइ अवां सां गॾु हूंदो अवांजो पंहिंजो यूनिस बकारी।

जनाब वेलकम बलिकार खुश आमदीद जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क वासण मुखातिब आते हुए खुश आमदीद जाते हुए खुदा हाफिज दो अल्फाज ही काफी हैं अगर कोई प्यार से कहे हमारे मैसेज हमारे प्यार जी साबती हैं सो लिखो MTI स्पेस रही पेने गोठन शहर नालो लिखी पेने नालो लिखो 88 81 1 ते मैसेज त्यारे मोकलियो यह है GAFM 88 रेडियो नेटवर्क सिंधड़ी जी शाम यूनिस बकारी जो सलाम मैसेजेस अचण शुरू थी वे हैं मातली खालिद नोतकाणी लिखियो वेलकम मिठा मानो किरोड़े कुर्बतां जा खुश हो जो आबाद हो जो आई बाबू लाशारी आई अयूब लाशारी असांगे बुधी रहा हैं आई अवां असांगे बुधो प्या जी जनाब जामोट फार्म का वेलकम है भलीकार

बेवस रामु भील असांखे ॿुधे थो भलीकार नज़ीर वज़ीर शबीर ॿुधे पियो ऐं जुमू भील अवां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं वॾा वॾा अवां असांखे ज्वाइन कयो आहे नए दुंबाले खां अखियुनि ते अवांजो मैसेज मिठा माण्हू भलीकार मज़ समाइन पहिरें कलाक में वञा मैसेजिस हूंदा ऐं ॿिए कलाक में अवां जूं कॉल्स हूंदियूं त पोइ बिल्कुल तव्हां छह वॻे ताईं लिखो MTI स्पेस पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो 88 81 असांजो नंबर 888 1

सजन सांगीअ जी वांड खां असांखे ज्वाइन कयो गुलाब गुल। महिरबानी गुलाब गुल, तमामु घणी महिरबानी। वेलकम चवंदासीं प्रोग्राम पसंदि करण लाइ। तमामु घणियूं मोहबतूं। ऐं ॻोठ आलम ख़ान जरवार खां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार ऐं मोहम्मद इदरीस जरवार ॿुधनि पिया। मिठनि माण्हुनि खे चवंदासीं भलीकार, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। थैंक यू ऐं महिरबानियूं ऐं मोहबतूं अव्हां जूं। थैंक यू वेरी मच भलीकार। ऐं जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे, जी जी जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे नफ़ीस खत्री। अव्हां असांखे ॿुधी रहिया आहियो मिया पोटा तलहार खां। तमामु घणियूं मोहबतूं अव्हां जूं, अव्हां खे चवंदासीं वेलकम। ऐं तमामु घणी ख़ुशी थी अव्हां मैसेज पहुता। ऐं जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे जी जनाब गोविंद। ऐं गोविंद कोहली साहब, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, तव्हां असांखे ॿुधो पिया। मोहबतूं वॾा वड़वां जा अव्हां असां सां गॾु शामिल आहियो। जी जनाब ॻोठ आहे नोटो खां, थैंक यू वेरी मच। ऐं रामचंद कुमार बि असां सां गॾिजी ॿुधे पियो। तमामु घणियूं मोहबतूं, थैंक यू। ऐं जेके जेके महिरबानी ॿुधनि पिया, तव्हां सभिनी जा वॾा वड़। ऐं ॻोठ पाबो वेरो थर पार्कर खां दिलीप कुमार मेघवाड़, नोवल राय, दानिश कुमार ऐं सूरज गुल जो मैसेज पहुतो। शंकर लाल बवा सां गॾिजी ॿुधे थो। किरणे कुर्ब हाजी सुल्तान लुंड खां प्यार अली लुंड साहब मैसेज पहुतो। महिरबानी, थैंक यू, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। तमामु घणियूं मोहबतूं। ऐं वॾा वड़वा जा जिते बि हुजो, शाद हुजो, आबाद हुजो। ऐं पुनू ख़ान पंवर खां रुस्तम अली पंवर जो मैसेज पहुतो। रुस्तम अव्हां जूं बि तमामु घणियूं महिरबानियूं। किरोड़े कुर्ब अव्हां जा जो अव्हां सां शामिल। हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली लग झंडे मरी खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली ॿुधे पियो। अव्हां जूं बि तमामु घणियूं महिरबानियूं। ऐं किरोड़े कुर्ब तव्हां जा। ऐं झलूरी खां ख़ालिक लाशारी, तव्हां जूं मोहबतूं जो तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे। ऐं ॻोठ ग़ुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी साहब ॿुधे पियो। अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं। भलीकार चवंदासीं महबूब नाज़ जलालाणी ऐं मुख़्तियार नाज़ जलालाणी, अव्हां जूं महिरबानियूं। आरज़ू असलम जलालाणी, अव्हां जूं मोहबतूं। तव्हां लिखियो आहे असलाम वालेकुम। वालेकुम असलाम। किरोड़े कुर्ब सुहिणा साईं।

जी जनाब मोहम्मद अयूब लाशारी साहब ए बाबू लाशारी एक दफो बेहर जामोट फार्म का ज्वाइन कर चुका है सोना साई अवज तमाम घनी मेहरबानी हूं आई अलीपुर मोरी खां असा के ज्वाइन कयो है जी जनाब अलीपुर मोरी खां असा के याद कयो है खुदा देनु बजीर अवज तमाम घनी मेहरबानी हूं अदा फौजिया जो कलाम उधराई जो मीठा भा कोशिश करासी मोहब्बत रेडियो नेटवर्क शो अवां बुधो पिया सिंधड़ी जी शाम सिंधड़ी जी शाम में यूनुस पकारी है सलाम अवां केड़े शहर वाहण वस्ती बस्ती का बुधो पिया उन लिखो MTI स्पेस दियो पेंजे गोठ शहर जो नालो लिखो 88 81 888 नंबर उन मैसेज

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं ग्लो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़न जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: खुशखबरी खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचे कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: खुशखबरी तवाजे पैंजे शहर मातली में अवाजो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन के सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अजा मुस्तफा CMH हॉस्पिटल कराची की मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन की मखसूस बीमारियों जो इलाज बार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड की माहिर डॉक्टरयाणी हाने रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम की खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी फार्मेसी की सहूलत मौजूद आहे निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210

वेलकम बैक मज़ी सामीन जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क वहां मुखातिब है यकीनन अवां शो बुध पिया सिंधड़ी जी शाम सिंधड़ी जी शाम में यूनुस बकारी सलाम ऐं तमाम घणी मोहब्बत अवां सभिनी जे लाइ जिन जिन इलाइक़नि वाहिणनि वस्तियुनि बस्तियुनि में तव्हां जॉइन कयो आहे तव्हां सभिनी जी मोहबतूं ऐं भलीकार आहे बदीन खां बखर सीराणी खां सखर कींझर खां कारूंझर केटी बंदर खां कश्मोर मीरपुर ख़ास खां मटियारी मोरो मेरापुर सखर लाड़काणो सभिनी शहरनि सां हिकु ई आवाज़ जुड़ियल आहे ऐं सभिनी शहरनि में हिकड़ो ई आवाज़ जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जो गॾियल आवाज़ अवां जा मैसेजिस अची रहिया आहिनि शामिल कंदा हलंदासीं ॻोठ मोहम्मद तैयब थेबो खां असांखे ज्वाइन कयो हबीबुल्ला थेबो

तव्हां शो खे पसंदि कयो आहे। मोहबतूं मिठा माण्हू भलीकार, थैंक यू वेरी मच अगेन, वेलकम चवंदासीं। ऐं पाटार पुलिस लाइन बदीन खां असांखे ज्वाइन कयो हाफिज़ अब्दुल जबार सूमर ऐं हाफिज़ मोहम्मद हारून सूमर साहब, ॿुधनि पिया मोहबतूं मिठा माण्हू। मिठी थर पारकर खां मोहम्मद मलिक मोहम्मद बलोच ॿुधे पियो, शफ़ी मोहम्मद बलोच, शहबाज़ गुल बलोच भलीकार। ऐं झपियो खां मोहम्मद सिद्दीक पाढ़ो ऐं रोशन अली पाढ़ो ॿुधनि पिया, अव्हां बि लिखियो आहे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, तमामु घणियूं मोहबतूं। सखर ज़िले जे तालके साले पट खबड़ी भिट खां असांखे ज्वाइन कयो आहे मोहम्मद इरफान अली थेबो साहब, मोहबतूं तव्हां जूं।

ऐं नोटो खां असांखे रवीना कुमारी ऐं नंढड़े कमलेश कुमार ऐं रजीना कुमारी जो मैसेज पहुतो आहे। रामचंद कुमार मकवाणो भलीकार। लुटको मोरी सांगड़ खां अब्दुरहमान लगारी ॿुधे थो ऐं मिठा खान लगारी तालिब हुसैन लगारी किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू। दरगाह पीर पिथोरो खां मोमिन शर ऐं सोबदार शर लिखियो। तमामु घणी महिरबानी जेको ट्रैक तव्हां लिखियो असांजी लाइब्रेरी में मौजूदु आहे कोन, हू हुजे हा त ज़रूर ज़रूर नशर कयूं। महिरबानी।

जेक बवाद खां शौकत अली जखराणी साहब ऐं रहमत अली जखराणी बुधन पिया। तव्हां सभिनी जूं महिरबानियूं, अनेक एहसान, कुर्ब, महिरबानी।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: तो गद यूनिस बकारी सिंधड़ी जी शाम अवां जे नाम अवां कार में आयो या बाजार में, अवां घर में आयो या शहर में, अवां वाहणन वस्तियन बस्तियन या पंहिंजे मस्तियन में जिते बोजो शाद ऐं आबाद हुजे। दोस्तो मेहरबानो कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो, GA88 रेडियो नेटवर्क ओके जनाब, तो पोए तव्हां जल्दी जल्दी से टाइप करे वठो, बाकी 15 मिंटन जे साथ जा मैसेज शामिल करे वठंदासीं। तो टाइप करियो MTI स्पेस दई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं जल्दी जल्दी सां असांखे मैसेज ॾियारे मोकिलियो, छो त अव्हांजा मैसेजिस यकीन असांजे लाइ इंतिहाई अहम हूंदा आहिनि। ॾिसंदासीं असां सां गॾु केरु हूंदो। ओके जनाब, असांखे जेके महिरबान ज्वाइन करे चुका आहिनि उन्हनि जो ज़िक्र कंदासीं। रोहिड़ी सखर खां नज़ीर अहमद मंगरियो ॿुधे पियो, मिठा माण्हू भलीकार चवंदासीं, तव्हां आवाज़ ऐं अंदाज़ खे पसंदि कयो, मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां। ऐं कुंडरी खां चोवन कुमार कोहली, डॉक्टर अनीता संगीता पारस, अव्हां जूं महिरबानी जो अव्हां प्रोग्राम खे पसंदि कयो आहे। त पोइ दोस्तो ॾिसंदासीं असां सां गॾु हाणे केरु थो जुड़े, केरु हूंदो जेको लिखंदो असांखे मैसेज। जल्दी सां टाइप करे वठो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 8881 ते 888 ते मैसेज जल्दी मोकिले छॾिजो। जल्दी माना त जल्दी, जी हा, हाणे जो हाणे। ॻाल्हि करी थो ज़ुल्फ़नि जी, मां अणभन अणभन वारनि जी। तूं ॻाल्हि करी थो ज़ुल्फ़नि जी, मां अणभन अणभन वारनि जी। तूं कूक सुणी थो कोयल जी, मां पेट बुखायल ॿारनि जी।

सीधा बुधा सको कहड़ी स्टेशन तवासा कनेक्ट थेला यानी असो सत अठ बल्कि अठ स्टेशन तसो ही शो बुधाए रो लाड़काने के बुध पे तखर के बुध पे तेहरापुर या मोरे के

तव्हां सकरंड मटियारी मीरपुर ख़ास या मातली खे ॿुधो। बस जिते हुजो हुजो ख़ुशबाश ठीक ठाक ख़ैर ख़ैरियत सां शाल अव्हांजी मुर्क मेरी न थिए। ओके त पोइ ॾिसी था वठूं त असांखे यादि कंहिं कयो आहे, कंहिंजो मैसेज पहुची चुको आहे असां वटि। ओके जनाब असांखे मैसेज पहुतो आहे, ॾिसंदासीं मैसेज मैसेज। मुश्ताक साहब असांखे ॿुधे त भली कार मुश्ताक लाशारी ऐं बाबू लाशारी माशुक लाशारी अव्हां जी महिरबानी, अव्हां असांखे ॿुधो पिया या मोट फार्म खां।

जी जनाब वेलकम। उन्होंने मेहरबानी के जेके हाणे हाणे मैसेज असांखे मोकिले रहिया आहिनि। हिकु दफ़ो ॿीहर गद मैसेज मोकिलिया आहिनि ॻोठ मोहम्मद तैयब थेबो खां हबीबुल्ला थेबो साहब। तव्हां मुंहिंजी आवाज़ अंदाज़ गुफ़्तगु सभिनी खे पसंदि कयो आहे। मां तव्हांजो थोरायतो आहियां साईं। जेके लफ़्ज़ तव्हां लिखिया आहिनि मां उन्हनि जे लाइक़ु त कोन आहियां, पर इहा अव्हां जी मोहबत आहे जो तव्हां एतिरो सुठो ख़ुलूस मोहबत ऐं सचाईअ सां असांजी हौसला अफ़ज़ाई कयो था। तव्हांजो हिकु वधीक मैसेज आयो, तव्हांजो तमामु घणियूं महिरबानी। थैंक यू।

0: अब्दुल हकीम खास के लिए बदीन खां बदे पियो भलीकार मिठा माणो केरड़े कुर्बतां जा
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
2: ज़्यादा सुठो
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

रंजन कोरी मेरे प्रखास कोरी गोठा का बदेपे भली का रंजन अब्दुल हकीम खास के लिए साहब अवाजू मोहब्बतू अवाम बसा के बदीन का ज्वाइन किया कुर्ब।

लाखाट खां मोहम्मद आलम मल्हा साहब बुधे पियो मिठा माण्हू भलीकार जी जनाब सास ऐं आवाज़ साथ में हुन जे साथ हिकिड़ो ट्रैक प्ले करे वठूं न्यूज़ ब्रेक बि हूंदो न्यूज़ ब्रेक खां पोइ कमर्शियल ब्रेक ऐं हुन खां पोइ बाक़ाइदगी सां हुन जी कॉल्स वठंदासीं कॉल जे लाइ तरीक़ेकार उहो ई साॻियो पहिरीं हिन ट्रैक खे ॿुधंदा हलंदासीं ब्रेक वठंदासीं हुन खां पोइ जूं ॻाल्हियूं पोइ सां ॿुधूं ट्रैक जी जनाब जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क वहां सां मुखातिब आहे प्रोग्राम आहे सिंधड़ी जी शाम ऐं उन सिंधड़ी जी शाम में यूनिस बकारीअ जो सलाम

ही मयार वारो गानो है पाण बुधंदासी बाकी फिलहाल मां बिल्कुल हथ को निकडंदस मां ब्रेक खां पे वापस वरी इंदस मता समझो त मां हलियो वेम इंशाल्लाह इंशाल्लाह साह टुटण ताई जो साथ जारी रहंदो न्यूज़ ब्रेक ला हलाऊं था अॻिते वधूं था ऐं ही गानो ॿुधंदा हलंदासीं केॾे न वञ

0: आर्ग्यूमेंट मुल्क में जबरदस्ती चलाया जा रहा है कि सिस्टम कलैप्स हो चुका है तो आप सुबह बनाए। वैसे तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मान लो तो इस्लामाबाद को थरपारकर वालों को हवाला कर दे, हम उसको ठीक कर देंगे, वहां के बच्चे को टॉप हर एग्जाम में टॉप करवा देंगे, उनका हॉस्पिटल्स का हाल हमने अभी अभी देखा, उनका हॉस्पिटल्स को भी हम 100% मुफ्त करवा के आर्मी दुनिया का स्टैंडर्ड्स पे लेकर आएंगे। हमें सिर्फ इस्लामाबाद का जिम्मेदारी दे दे, वहां हम आपको दिखा देंगे कि थर थर के नौजवान, थर के सियासतदान क्या क्या कर सकते हैं। हमेशा की तरह अब ये रिवायत बन चुका है कि हमारे थर के बच्चे टॉप करते हैं। जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के बजाय, उनके लिए तालियां बजाने के बजाय अपने नफरत की सियासत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनकी नफरत की सियासत दफन करेंगे और थर तरक्की करता रहेगा।
1: सिस्टम की नाकामी से नवन सूबन वो मंतक समझ का बाहर है। इस्लामाबाद नाकाम थो है तो इस्लामाबाद के थर वारन हवाले कयो। थर की तरक्की से समूरो मुल्क हैरान है। इस्लाम कोर्ट में थरकोल फेज 3 मनसूबे जो इफ्तिताह कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो कराची में सियासी यतीमन की जमात सहूनियन की सियासत कर रही है। सहूनियन वाली सियासत के सिंध में आनण वाली कोशिश के कामयाब थे न डींदी। थर जा बार टॉप कन था तो अवा के इन वाधायू डेण बदरा नफरत वाली सियासत कर था। थर की तरक्की कुछ मानून के हजम नाहे थी रही, अस नफरत की सियासत के दफन कर छींदी। इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ तो थर जो कोयलो बेकार है, सीड़पकारी करण बेकार है। हाने पूरो पाकिस्तान हैरान है तो थर किथे पहुंची वो है। इस्लामाबाद वालन के चवा तो हू बे थर जड़ी तरक्की ध्यान देन।

0: वेलकम बैक मजे सामई ही आहे GFM88 रेडियो नेटवर्क। जी जनाब सांझी टाणे ही आवाज अवा तई पहुंचे पियो GFM88 रेडियो नेटवर्क जो प्रोग्राम जो नालो है, शो जो नालो है सिंधड़ी जी शाम। सिंधड़ी जी शाम शो में यूनिस बकारी जो सलाम। शामिल थियण चाहियो था त हाणे कॉल्स जो टाइम थी चुको आहे, उन जे करे तव्हां जो कॉल्स वठंदासीं। सिंपली हिकिड़ो नंढो अर्ज़ हूंदो त कॉल फ़क़ति हिकु दफ़ो कंदो तव्हां ऐं मुख़्तसिर ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ताकि घणे खां घणा जेके ॿुधंदड़ आहिनि उहे शामिल थी वञनि। नंबर नोट करे वठो 2334-3525-786। जी हाँ, नंबर है 0334-3525-786। सफा अना आहिस्ता आहिस्ता बुधाया तो 2-3-4-3-5-2-5-7-8-6। बुड़ी 2334-3525-786 ते पहिरीं कॉल ॾिसंदासीं त कंहिंजी बि अचे थी ऐं कॉल अटेंड कंदासीं। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी केर साहब ऐं किथां खां? छा हाल आहे कुर्बान? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? अलहमदुल्ला, अवां जी दुआ लॻी पए। तव्हां ठीकु आहियो, चङा भला आहियो, बसि ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। अवां सां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे?

0: वालेकुम असलाम, तमाम घणी महिरबानी, भली कर। जी मज़े समाइन त पोए ॾिसंदा जी हाणे कॉल ते असां सां गॾु केरु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। जी केर साहब ऐं किथां खां? छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो पुनल हुसैन मेहर साहब, घोटकी जे थधियुनि हवाउनि मां यादि करण लाइ महिरबानी। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई
1: आहे।
0: ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। महिरबानी महिरबानी मेहर साहब, महिरबानी महिरबानी। अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे? जी जी, आवाज़ अचे पियो। नाला खणी वठो हुननि जा। वालेकुम असलाम, किरोड़े कुर्ब उन्हनि सभिनी जा ऐं तव्हां जूं स्पेशल महिरबानी। आबाद हुजो, ख़ुशि हुजो, सदाई सुखिया, तारनि में चंड ऐं खीर में खंडु हुजो। कुर्ब साईं, कुर्ब तव्हांजा लख थोरा। GFM88 रेडियो नेटवर्क शो ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम। ॾिसंदासीं त हाणे असां सां गॾु कॉल ते केरु हूंदो। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, केरु साहब ऐं किथां खां? छा हाल आहे जखराणी साहब? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला आहियो?
2: बिल्कुलु,
0: अलहमदुल्ला, असांजी पूरी टीम ख़ुशि आहे। अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? वालेकुम असलाम, किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू, लख थोरा तव्हांजा। जी जनाब, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सर।
0: साईं केर साहब ऐं किथां खां?
3: सर, शहबाज जमारी, कराची, गुलशन इकबाल।
0: छा हाल आहे शहबाज जमारी? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला, मतारा जोड़। अलहमदुल्ला, अव्हां जी दुआ लॻी पई आहे। शो कीअं थो लॻे?
3: बिल्कुलु बिल्कुलु सही पियो लॻे, असां कराची में कंदा आहियूं।
0: हा, अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
3: सर, मुंहिंजी दोस्त आहे नदीम जमारी, जेको मूंसां गॾु कंदा पियो।
0: अच्छा, नदीम जमारी जूं महिरबानियूं, तव्हां जूं महिरबानियूं। कुर्ब तव्हांजा मिठा माण्हू।
3: सर, कुझु दोस्तनि खे सलाम ॾियणो।
0: भले, सलाम ॾियो अखियुनि ते।
3: सर, अब्दुल करीम जमारी आहे, मुंहिंजे बाबा साईं शेर मोहम्मद जमारी, जेको जेतम प्रोग्राम कंदा पियो। आज मोहम्मद खान मेरी केर सलाम ॾियूं
0: था। सभिनी खे तव्हांजा सलाम पहुची विया साईं। किरोड़े कुर्ब
3: सलाम
0: मूंखे बि अखियुनि ते, अखियुनि ते। वालेकुम सलाम, महिरबानी साईं। हा, मां कोशिशि कयां थो। हाज़िर साईं, हाज़िर हाज़िर।

0: ਜੀ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੇ ਅਵੀ ਕਾਲ ਪਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 2024-3535-786 0334-3525-786 ਅਸਾਂ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੋ ਕਾਲ ਕੈਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਲਾ ਅਟੈਂਡ ਥਾ ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਕੇ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ विछोड़े जी मारे लाए मुखे सूरन सन सतायो
1: जी दीदी तमाम बेहतरीन गानो है इनके पूरो हलाए जा जरूर
0: सही पूरो गानो हले जो बुधो अमा सा कदी बे केर पे बुधे
1: जी रस्ता वाली बार मलक मुंद बलोच है अब्दुरे मान लगारी है प्यारो दोस्त है असो मलक मोहन बलोच मोहम्मद सदीक पाड़ो पे जेके बुधन पे सबनी के खोट सारा सलाम
0: कुर्ब कुर्ब मेहरबानी वालेकुम सलाम।

0: जी जनाब, इस तरह की कॉल ऐसी कह रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: साईं केर साहब है कि था कहाँ? जी छाल है चांडिया साहब, खुश आयो? अलहमदुल्ला, तहां सा गड़ बियो केर बियो बुधे? जी जी, खास दोस्त ने खास भाईरन के नाला वठो। जी जी, मेहरबानी कुर्ब लखथोरा मेहरबानी। जी जनाब, थैंक यू वेरी मच। कॉल करण का पहरी एकड़ो नंडो अर्ज हुंदो, जे मैं कॉल कयो त के साफ सुथरी जगह ते बी कॉल कयो, तेज हवानु में न बियो, छो ते रेडियो ता जेका कॉल वने पिन में तमाम घणो गोड़ हुंदो, सुठो को लगंदो। इन जे करे कोशिश कयो त हवा के हथाड़ो डियो, ताकि ता जो क्लियर चिटो चिटो रेडियो में आवाज अचे। कॉल ते हलंदासी, दिसूं ता केर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: साईं केर साहब ऐं किथां खां?
2: इरफान हली ते वो गुलाबी संगत तालका थालेपट खबरी बेटा खां।
0: छा हाल है मिठा मानो, खुश आयो? अलहमदुल्ला, दुआ लगी पे तुम दुआ खुश आयो?
2: अलहमदुल्ला, माशाल्लाह तमाम सुठो प्रोग्राम तुम्हारा हली रो है। माशाल्लाह हाँ वे प्रोग्राम से जो बैकग्राउंड जुमाए तो
0: हाँ खबर पवे न भले मन के।
2: हाँ बिल्कुल, अज मैं तुझे शुरू का शो बुधो पेरी कलाक तको बैकग्राउंड हल पो ढो मजो पे थे असा सोचो बस पेरी कलाक में सिर्फ बैकग्राउंड है तवाज आवाज बुधो टे कलाक में भले।
0: हाँ थोड़ी थोड़ी चेंजिस इंदी अब तब्दीलियों आनी इंशाला दुआ कर।
2: हाँ इंशाला अल्लाह कम तो तुम।

0: वरियो पकीरा मेरी जंदियो सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम मोहब्बतू मिठावाणो कुर्ब साईं
0: घणा घणा असा जा घणा घणा सलाम असा जे दोस्त तमा वडी मेहनत करे ता के परवा उठा खुदा खुदा
1: मेहरबानी मेहरबानी लख थोरा साईं ओके जनाब फकीर आमिर जिंजी जी ये कॉल छा मुझे आवाज अवे ती पहुंचे पे अवा जी ख्वाहिश है शामिल थे जी हाँ तो बुढ़ी 324 पंटी पंजी 786 से कॉल कर दिसंदी तो हाँ कॉल से केर है असा सा गड हलो अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम
1: साई केर साहब किथा
0: खा
1: छा हाल है मिठा मानो सोना साई खुश आयो ठीक आयो अलहमदुल्ला मेहरबानी अवां जूं अल्लाह साईं तव्हां खे खुश रखे आबाद हुजो खुश हुजो
0: प्रोग्राम जो लुत्फ ॾेई रहियो आहे तव्हां जो प्रोग्राम माशाल्लाह थोरो थोरो ॾखिणनि जी हीर बि लॻी रही आहे सखर में ऐं प्रोग्राम मस्तु लॻे थो
1: हा तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हांजो सुहिणा साईं
0: जी जी थी सघे त जो असांखे उस कमु जो थोरो कलाम ॿुधाईंदा
1: हाज़िर
0: काफ़ी वक़्तु तव्हांजो न ॿुधो आहे
1: हाज़िर साईं कोशिश कंदासीं पंहिंजे दोस्तनि खे सलाम कलाम कंदो
0: काफ़ी दोस्त आहिनि इरफान
1: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मोहबतूं मिठा माण्हू खुश हुजो आबाद हुजो ओके अला हाफ़िज़ अला हाफ़िज़ जी जनाब ही हसीन जिंदगी गुज़री त वई को ख्वाब हो या ख्याल हो कॉल अटेंड कयूं था ॾिसूं था केरु आहे असां सां गॾु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: केरु साहब ऐं किथां खां
2: मुंहिंजी वरी मां निज़ामाणी करियोगा वारे खां फस्ट टाइम तव्हां प्रोग्राम मां ॿुधो आहे भाउ
1: मिठा माण्हू मां सदके वञा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो अखियुनि ते वेलकम दौर एफएम जो आहे साईं भला ॿाहिरां ॾींहं जे उन्हनि इलाइक़नि में जिते अञा बि वॾियूं इंटरटेनमेंट कोन्हे जिते मोबाइलनि जा सिग्नल एतिरा कोन्हे उते एफएम वञे थो एफएम ख़िदमत करे पियो साईं कहिड़ो गानो हुकुम करियो हुकुम करियो
2: गानो आहे फौजिया सुमरो जो तवी वींदा लॻंदा ॾींहं फौजिया सुमरे जो आवाज़ में बि आहे
1: अच्छा ॾिसूं था फौजिया त असां प्ले करे चुका आहियूं बाक़ी को ॿियो आवाज़ जेकॾहिं हूंदो अवी वींदा त लॻाईंदा ॾींहं ॾिसंदासीं जेकॾहिं असांखे मिले थो ज़रूर साईं
2: ख़ुशि हुजो भाउ
1: थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू
2: थैंक्यू सो मच
1: ख़ुशि हुजो ख़ुशि हुजो मोहबतूं मिठा माण्हू मोहबतूं तव्हांजूं प्यार ऐं पंहिंजा महिरबानी लख थोरा

0: लोकेशन दाची कॉल ते केरा हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: जकबाबाद का शौकत अली जखराणी गलाए पियो
0: छा हाल है शौकत अली जखराणी साहब जकबाबाद जो हवाओं की हैं भला गर्मी घटी है ना
1: बिल्कुल गर्मी घटी है बिल्कुल सही है मौसम
0: हां उत्तर जी हवा लगी थी
1: सर उत्तर जी में कांसी लगे बाकी मौसम सही थी है
0: मौसम सही थी भैया बस इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हाँ उतर लगंदो तदेही तो भिटाई साई चयो तो सर डिसरिया पांद उतर लगाओ प्रेम तो कारण कांद सई सई सुखाओ कयो
1: जी बिल्कुल
0: अवां सके बे केर केर पे बुदे
1: रस्तम पावर आए मनीर अहमद सियाल सिकंदर अली संभाणी सिकंदर अली संभाणी
0: मेहरबानी मिठो मानो लख थोरा ता जा जी मोजिस खवातीन हजरात जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जा अठई चैनल अवां सा ऑन एयर आइन जी एफ एम रेडियो नेटवर्क जा अठ चैनल यानी सखर लड़कणू मीरपुर खास मोरो मेहरापुर सकरंट मटियारी मातली के स्टूडियोज में एक ही वक्त वहां जो शो है सिंधड़ी जी शाम ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे असां सां गॾु हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहब किथां खां खीरथर जबल खां मंज़ूर हुसैन चांडियो साहब वेलकम चवंदासीं तव्हांखे तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे जी जी महिरबानी सभिनी जी थैंक यू अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ जी दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरो ऐं भाउरो ॿुड़ी 344-3525-786 ते कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: केरु साहब ऐं किथां खां
2: जी सर साजिद चांडियो थो ॻाल्हायां खीरथर जबल खां
0: छा हाल चांडियो साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो
2: केरु केरु लाइ मां दुआऊं
0: हा अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे साजिद
2: जी मैं भाव आजिद हुसैन चांडियो
0: हाँ
2: जो नजर हुसैन चांडियो है मंजूर हुसैन चांडियो
0: मेहरबानी सभिनी जो
2: जी एकड़ो नालो यार आला सर
0: तकड़ो वठी वठ नालो
2: मुझे प्यारो पहरी भाव बाबर हुसैन चांडियो
0: मेहरबानी मेहरबानी लख थोरा खुश हुजो आबाद हुजो।

0: నేను బ్రేక్ అయ్యే మైజో వాపిస్ వచ్చే బ్రేక్ దొరాన్ బిల్కుల్ కాల్ నిక్కజో చకణి కమర్షియల్ బ్రేక్.
1: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज.
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आओ पर बीरो किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहन में आहिन चार रंग की खूबियों और कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी की लॉक करे और चार रंग की खूबियों जल्द में फाइन लाइन्स और झुरन के घट कर और रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन बीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम और ड्राई उनका जरूरत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
6: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी.
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाखला ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे दी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लगाईंदा। अवां बि इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ए दवाओं मुफ्त में डिनियूं वेंदियूं। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों ए थाओं खणी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ए आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: कलाम साईं केर साहब ई किथा खां
1: साईं पीर वसण कोट मोर पंजल शहर फिदा हुसैन शहर साईं
0: फिदा हुसैन शहर साहब वेलकम था चौं भली कार था चौं खुशामदी था चौं भली करे आया जी आया कोशिश कबी थैंक यू वेरी मच लख थोरा कॉल करण जे ला रुस्तम अली पवार साहब अवर पे बुधे
2: दिलीप कुमार मेघवार चोहन कुमार कोहली नाग फकीर मोहम्मद जलालानी कुर्बान अली खास के लिए जेके भी दोस्त बुधन पे सभी के सलाम
0: वालेकुम असलम तमाम घनी मोहब्बत तहां जो साईं भली कर थैंक यू वेरी मच ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो आवाज साज़े आवाज़े साथ में सिंधड़ी जी शाम अवां जे नाम काल ते रिसनासी केर आहे असां सां गॾु हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम यूनुस बाम खुश आहियो ख़ैर आहे
0: अलहमदुलिल्लाह केर साहब ऐं किथां खां रामचंद कुमार कोहली के भली कार था चऊं ऐं असां कॾहिं बि केर पियो ॿुधे साईं वालेकुम असलाम किरोड़े कुर्ब तव्हांजा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो मोहबतूं साईं जी जनाब लख जी हा केर हूंदो असां गॾु ऐं केर थींदो अॼु किशो जो हिसो बनबो त पोइ हुन जे लाइ कॉल अटेंड कयूं पिया हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केर साहब ऐं किथां खां जी जी अवां सां गॾु बि केर पियो ॿुधे जी जी
4: अब्दुल
0: जी जी वालेकुम असलाम किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू किरोड़े कुर्ब थैंक यू लख थोरा तव्हांजे जी मज़े सामईन जी FM 88 रेडियो नेटवर्क जे सखर लाड़काणे मिरपुर ख़ास मातली मटियारी मेहरापुर मोरो सकरन खे अवां हिकु ई वक़्तु ॿुधो ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम केर साहब हलो अस्सलाम वालेकुम केर साहब ऐं किथां खां जी जनाब आवाज़ अचे पियो केर पिया ॻाल्हायो जनाब कॉल ड्रॉप थी वई ॾिसंदासीं त हाणे असां गॾु कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम सलाम
0: केरु साहब ऐं किथां खां जी चांडिया साहब अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे जी जी
5: साईं असांजे मास्टर मंज़ूर कलाम ॿुधायो गॾु खाइण पीअण वारा दुश्मन थींदासीं
0: ठीकु आहे कोशिश कंदासीं थैंक यू सर थैंक यू महिरबानी लख थोरा मज़ समीन शो आख़िरी लमात्रा वधे थो प्यारे पंहिंजा

0: कॉल ते के रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, केर साहब है कितना खा
1: मेराली कलोड़ो कंडिया देखा।
0: अच्छा हाल है कलोड़ा साहब, खुश आयो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, जो आए ता जी ता बुदायो।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, वहां सा कदी केर पे बुदे
1: मुन जो बाबा मामा दे अमीन कलोड़ो ए मिर्ता कब के भारत ने बुदा ना सबने के सलाम आई मुन के लाइ दुआ।

0: घणी कूड़ा कसम फेरी ने एड़ो जबरदस्त सुरीलो दर्दीलो आवाज गजी बुधूं पिया कॉल पे अटेंड करे था कॉल ते केरे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी केर पे गलाइन बाबर ता जी पेरी कॉल आई हुई मुझे ख्याल में चलो ता सा कर भी केर पे बुदे जी जी जल्दी ना लाओ भाऊ टाइम घटा मेहरबानी मेहरबानी लख थोरा अच्छा काफी ऐसा ये नोट करना है तो कदे कदे मानो आवाज चेंज करे भी कॉल करे तो ये न कहो प्लीज रेडियो आए ये अवाजी कौमी अमानत है असा जो को मसलो को ने आर जे चरो ब कला गला हलियो विंदो पर अवाजी मोहब्बत उनके तारीख में याद रखे विंदो प्लीज प्लीज हर के जला 2 मिनट छियो वारे वारे से कॉल के एकड़ो कॉल करे एकड़ो दफो करे वरी बेन जो कॉलो बुधो ताके सडी सिंध एक थी वने सजी सिंध प्रिय जो पाछो हो जे केर केंचे ला नाराज ना हो जे मोहब्बत में मोहब्बत हो जे इसन से कॉल ते के रहे हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम भाई
0: आज ता जो आवाज चेंजर लगला है आवाज चेंज पेरी खत्म करियो प्लीज प्लीज आवाज चेंजर लगला है भला ये छो था करियो दोस्तों सनाजी कॉल दे के रहलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब है किथा का जी हेलो आवाज कौन पे अच्छे ओके जनाब शायद सिग्नल जो इशू है अदा जिथा कॉल करे पे ओदे सिग्नल कटे जी जनाब छिनी छिनी बेडो मिठा मां गरीब के ही ट्रैक मास्टर फतेह जो आवाज है आई हां यूनुस बकारी की कॉल अटेंड करे तो सुदा केर है हेलो अस्सलाम वालेकुम केर साहब है किथा का जी अदा बियो आवाज कर केर पे बुदे
1: या दोस्त मंताज चांडियो अदनान चांडियो असद चांडियो इंतियाज चांडियो जुल्फकार चांडियो
0: तमाम घणी मेहरबानी लख तो रहा तहां जा खुश जो थैंक यू मेहरबानी जुल्म कयो साहुले नामा खत्म जी जनाब सासी कॉल ते के रहे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो
2: असले जूने जो नर्स एयरपोर्ट सक्कर
0: छा हाल सही खुश आयो नालो एकड़ दफो रिपीट कजो
2: दुआ बाबा दुआ तवा खुश आयो बियो कहरा
0: अल्हम्दुलिल्लाह मुचो तमा केर साहब पे गलाय नालो रिपीट कजो छो तो सवेरे कॉल अटेंड करण गाग में ताई नालो गुजरी वयो
2: अच्छा फकीर रजवली जूने जो नज़द एयरपोर्ट सक्कर
0: छा हाल फकीर साईं खुश आयो ठीक आयो चंगा भला मतारा जोड़
2: लख सान मां तवा सा कुछ दिया अगमज भी बदिया कन अगमज गलाय चुको हम बाबा पर आखरी कॉल लगी टाइम घट मिलियो
0: हां साईं टाइम हुई भी घट होंदो अच्छा कने कॉल्स ते रश है तमाम घणी आई ता जो मेहरबानी दोस्तन ने नाला खणन पसंद कंदो
2: हिकड़ो लतीफ साईं जो बैत न बुधायो
0: बिल्कुल बुधरायो बिस्मिल्लाह
2: बिरह दी बानी कैखा सिखे सुलपरी
0: जी जी
2: हाणे ॾींदई हथ में मसु कलम कानी
0: जी जी
2: हरफ पुछंदई हे कहिड़ो ज़ाहिर ज़बानी
0: वाह वाह
2: कन अॻियां जानी कहिड़ी कंदे ॻाल्हि
0: सुभान अल्लाह ज़बरदस्त हाणे दोस्तनि
2: बस दोस्त सॼी सिंध आबाद रहे हिकिड़ो कलाम चवां आख़िर में हू असांजो हलाईंदो हिकिड़ो कलाम
0: साईं मां वाइदो नथो करे सघां छो त क्यू शीट कंप्लीट हूंदी आहे वरी इनशाला नेक्स्ट में तव्हांजी पसंदि जो गानो रखी छॾींदासीं
2: बस पोइ ईअं कयो नोट करे छॾियो
0: जी जी नोट कयूं था ॿुधायो
2: अॼु मूंखे पुनल जो ॾस आवाज़ सोना खान बलोच
0: इनशाला इनशाला ॿुधाईंदासीं ठीकु आहे साईं
2: थी सघेव त आख़िर में मिड़ई हिकु ई मसिलो ॿुधाइजो
0: साईं मां कोशिशि कयां थो पर छो त मां ख़ुदि हिन महिल एतिरो एंगेज आहियां जो गाना सर्च करणु मुंहिंजे वस में कोन हूंदा हज़ारे कॉलूं आहिनि कॉल मथे तव्हांजी कॉल छॾींदा
2: हे پرانو گانو آ سونا خان بلوچ جو
0: اکھندے
2: یہ تے مہربانی نہ تکلیف آ بتا اللہ آباد رکھے
0: مہربانی آمین آمین خوش ہو جو سائیں مہربانی لکھترا جی

0: जी जनाब एडी रीत जो के प्रोग्राम जो सुरहा रंग वां जे नाम कदे
1: मुजो
0: सा वालेकुम अस्सलाम केर साहब जल्दी जल्दी नाल उठी उठो मां मोकलाया पियो चांडी साहब आखिर बात में तानी कॉल आई थैंक यू वेरी मच भलीकार और जे समय इन ते अजोक शो पुजाणी ते पहुंचे तो यकीन तक अजोक शो वणियो हों इंशाल्लाह हयाती रही तो वरी मेला बचंदा मुलाकातू थींदू तेस ताईं यारो यारी मोकिलाए तो यूनुस बकारी इन दुआ सां त जिते बवां जो पेर हुजे उते खुशियुन जा ढेर ऐं ख़ैरी ख़ैर हुजे उस्तादन वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं निमन जूं छाऊं ऐं खुशियुनि वारियूं हवाऊं अवां जो मुक़दर बणजनि साथ सलामत सिक सलामत अलाह निकेबान।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 03-347-3241-230।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
6: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331252576
5: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनियो वेंदियों। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खड़ी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
5: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक मुसलसल
9: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252576।
9: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द खोरस, हिकु आज़मा

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल

0: डॉक्टर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: FM DAFM 88 Network सिंध की आवाज मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
1: सुनते रहो GAFM 90.4

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वने जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सगो था। हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदी। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरो थाओं खड़ी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 03-347-32-41-230।
8: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतन ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
11: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
12: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
11: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
12: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
11: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
12: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 0331-252-5786।
12: जी हा, 2315-25-786।
11: GFM रेडियो नेटवर्क,
12: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। रात जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून एतमाद।

0: अतलीते औरतुंडे बीमारी जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो नथियण औरतुंडे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: तो इस्लाम आबाद को फिर पार्कर वालों को हवाला कर दें, उसको ठीक कर देंगे। वहां के बच्चे को टॉप हर एग्जाम में टॉप करवा देंगे। उनका हॉस्पिटल्स का हाल हमने अभी अभी देखा, उनका हॉस्पिटल्स को भी हम 100% मुफ्त करवा के आर्मी दुनिया का स्टैंडर्ड्स पे लेकर आएंगे। हमें सिर्फ इस्लाम आबाद का जिम्मेदारी दे दें, वहां हम आपको दिखा देंगे कि थर थर के नौजवान, थर के सियासतदान क्या क्या कर सकते हैं। हमेशा की तरह अब ये रिवायत बन चुका है कि हमारे घर के बच्चे टॉप करते हैं। जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के बजाय, उनके लिए तालियां बजाने के बजाय अपने नफरत की सियासत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनकी नफरत की सियासत दफन करेंगे और थर तरक्की करता रहेगा।
5: सिस्टम जी नाकामी थे नवन सुबन वारो मंतक समझ का बाहर आ है। इस्लामाबाद नाकाम थे है तो इस्लामाबाद के थर वारन हवाले कयो। थर की तरक्की से समूरो मुल्क हैरान है। इस्लाम कोर्ट में थरकोल फेज थ्री मनसूबे जो इफ्तिताह कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो है तो कराची में सियासी यतीमन की जमात सयूनियन की सियासत कर रही है। सयूनियन वाली सियासत के सिंध में आनने वाली कोशिश के कामयाब थे न दींदी। थर जहा बार टॉप कन था तो अवा के वाधायू डेण बदरा नफरत वाली सियासत कर था। थर की तरक्की कुछ मानून के हजम नाहे थी रही। अस नफरत की सियासत के दफन कर छींदी। इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ तो थर जो कोयलो बेकार है, सीड़पकारी करण बेकार है। हाने पूरो पाकिस्तान हैरान है तो थर किथे पहुंची वो है। इस्लामाबाद वारन के चवा तो हू बे थर जड़ी तरक्की ते ध्यान देन। केपी जी सूरत हाल ते वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा बीहर सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करने जो फैसलो। जरियन मुजिब वजीर आजम ए सदर विच में थींदड़ मुलाकात दौरान खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल अपोजिशन से थियल गालन जो जायजो वरतो वेंदो। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रौज या इमरजेंसी वाले ऑप्शन से भी गालियों करने जो इम्कान है। हुकूमत अपोजिशन विच में थियल गालन की नाकामी जो जिम्मेवार केर। हुकूमत अपोजिशन जा एक बे इल्जाम। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चयो है त नथो लगे त मुस्तकबिल में बीहर गालियों थींदो। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी वाले ऑप्शन से गौर कर रही है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो है त हुकूमती होड सबब गालियों नाकाम थियूं आहिनि। पीटीआई केपी हुकूमत न छॾींदी ऐं नई असेंबली टोड़ींदी। लॉन्ग मार्च जारी है। सोहेल आफरीदी लीड कर रहियो आहे। रियासत ऐं केपीए जो मसलो सियासत न पर दहशतगर्दी आहे। रियासत जो फैसलो दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियूं न पर कार्रवाई आहे। बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त ॿिनि सालनि दौरान ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में दहशतगर्दीअ जा 6000 खां वधीक वाकिया थिया आहिनि। 1200 शहादतूं थियूं आहिनि। 37 हमलनि में अफ़गान शहरी मुलविस निकिता आहिनि। 14 अपघाती हमला कया विया जिन में अक्सरियत अफ़गान शहरनि जी आहे। सीटीडी ख़ैबर पख़्तूनख़्वा वटि रुगो 17 बख़्तरबंद गाॾियूं आहिनि। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुधाए तो दहशतगर्दी की खात्मे लाए वटन कड़ी पॉलिसी है। दहशतगर्दी के एक साजिश तहत मढ़ो वो गलत पॉलिसी सबब मुल्क विरायजी रो है। लॉन्ग मार्च के खिताब कंदे खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सोहेल आफरीदी है तो अवाम से गड बीहण बेवकूफी है तो मां बेवकूफ आया। हुकुमरान वट अना भी वक्त है तो अवाम बाहर निकतो तो केर भी कंट्रोल कर न सको। यमनी फोर्सिस आबी गुजरगाह बाबुल मदब जो बीहर कंट्रोल हासिल कर वरतो। साहिली इलाके जोबाब जो कंट्रोल संभालन बाद यमनी फोर्सिस की वही कामयाबी। यमनी हुकूमती फौज के तर्जमान मूजिब हूसिन के 1122 थाकन से कार्रवाई कई है जैं दौरान 1747 हूसी बागी मारजी व्या। मक्का मुआहदे की स्ट्रेटजिक सियासी ए दिफाई कमेटी जो इजलास अज रियाज में थींदो। नायब वजीर आजम इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ ए फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर सऊद
6: ले आए मॉस्पिल जो करे मच्छरों से घंटों फाइट।
5: दिफा वारा वजीर ऐं चीफ ऑफ जर्नलिस्ट ऑफ शिरकत कंदा। मका दिफाई मुआदे ते अकबराई जो जाइज़ो वरितो वेंदो। वॾी तर्जुमान मूजिब पाकिस्तान इलाक़ाई अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म ते क़ाइमु आहे। ईरानी फ़ौज नई जंग जी सूरत में अमरीका जी मेज़बानी कंदड़ समूरनि मुल्कनि खे निशानो बणाइण जो ऐलान करे छॾियो। ईरानी फ़ौज जे सरबराह जनरल अब्दुल हई चयो आहे त खिते में नई जंग शुरू कई वई त बाह खिते में अमरीका जी मेज़बानी कंदड़ समूरनि मुल्कनि ताईं पहुचंदी। कंहिं बि कार्रवाईअ जो तुर्त ऐं वधीक सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो। वज़ीर आज़म शाहबाज शरीफ सां पोलैंड जे वज़ीर जी मुलाकात। इलाक़ाई ऐं आलमी मामलनि ते ॻाल्हियूं। विच ओभर जी सूरत हाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। कारोबारी राब्ता वधाइण ते बि इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म शाहबाज शरीफ़ जो चवण हो त इलाक़ाई छिकताण जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारीअ जी ज़रूरत आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
3: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
10: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
11: खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
7: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
12: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
13: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
9: क्या वहाँ पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
14: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
14: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
14: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03132525786।
14: जी हा 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क
14: सिंध जो आवाज़।

प्रोग्राम दिल जी गल सा करा हुआ है आबिद चौहान आया वहां बुधी रहा हो जीए एफएम नेटवर्क न्यू ट्यून कैल सबनी तमाम प्री प्यारन दिलबर दिलरुबा दोस्तन के वेलकम भली कार खुश आमदीद सबनी दोस्तन के एक भेरो भी हर जगह तो शेड्यूल पे जो प्रोग्राम दिल जी गाल जो टाइम टेबल बुधाई दो हला जेके रेगुलर कॉलर्स आहन लिसनर्स आहन उनन जे इल्म में या गाल हुंदी त प्रोग्राम दिल जी गाल हाने मंडे खां थर्सडे यानी के सूमर खां खमीस ताई पीर से जुमेरात तक असा प्रोग्राम हलंदो आई टाइमिंग सागी हुंदी 9 टू 11 हियर वक्त थी रहो आए एकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां वापस वरंदासे अवां सां कचहरियूं कंदासे दिल जो गालियूं कंदासे फोन कॉल्स अवां जूं अटेंड कंदासे फोन कॉल्स लाइ

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: खुशखबरी, खुशखबरी! अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: खुशखबरी, खुशखबरी! अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजनि खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज़ पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
9: सुनते रहो GFM 90.4।